कृष्णा चौक ते लव काम क्रोध अग्नि सौमे लव होम जग अर पाठ पुराण ज्योतिष भाव है सो प्रवाण तप कागद तेरा नाम निशान जिनको लिखिया यही निदान से तनवंत दिसें सब घर जाई नानक जननी तन्नी माई मलार महला पहला बागे कापड़ बोलै नैण लम्मा नक काले तेरे नैण कबहू साहेब देखिया भैण ऊडा ऊड़ चढ़ा समान साहेब समृथ तेरे तान जल थल डूंगर देखा तीर थान तनांतर साहेब वीर जिन तन साज दिए सगनाल खंभ वत तृष्णा उड़णै की डांज नदर करे ता बंदा तीर ज्यों बिखाले त्यों बेखा वीर ना ही तन जाहेगा ना जाहेंगे खंभ पौने पानी अग्नि का सन बंद नानक कर्म होवै जपिया कर गुर पीर सच समावै ही शरीर मलार महला तीजा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरंकार आकार है आपे आपे परम पुलाई कर करता कर कर करता आपे विखै जित पावै तित लाई सेवक कौ इहा बढ़ियाई जां को हुक्म मनाई अपना भाणा आपे जाने गुर कृपा ते लही है इहा सकत सिवै कर आवै जीव त्या अमर रही है राउ वेद पढ़े पढ़वाद विखाणे ब्रह्मा विष्णु महेशा यही त्रैगुण माया जिन जगतो पाया भुलाया जन्म मरण का सहसा गुर प्रसादी एको

क्या तू सोचै, क्या तू चितवै, क्या तू करहिं उपाय, तांको कहो प्रवाह काऊं की जे गोपाल सहाय। बरसै मेघ सखी कर पाहन आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकुर, नाभनिध नाम समाय राऊ। अनक प्रकार भोजन बहु कीए, बहु बिंजन मिष्टाए, करी पाकसल सोच पवित्रा, हुण लावो भोग हर राय। दुष्ट बधारे साजन रहसै, है मंदर कर अपनाई, ज्यों गृह लारंगी हो आया, तौ मैं सब सुख पाई। संत सभा उठ गुर पूरे, तुर मस्तक लेख लखाई, जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लग आई। मलार महला पंजवा, खीर आधार बारक जब होता, बिन खीरै रहन न जाई, सार संभाल माता मुख नीरै, तब हो तृप्त गाई। हम बारक पिता प्रभदाता, भूलै मारक अनक लख बरिया, अन ठाउर नाही जय तात जाता राऊ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अगन कर मेलै, या माता पिता कंठ लाई राखै, आनंद सहज तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी, नाव निध नाम निधान ग्रह तेरै, मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आग्या हे दीनी, बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै, मोहि हृदय बसै नित चरणा। मुलार महला पंजवां।

गोरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास राऊ। हर जन केवड़ भाग वडेरे, जन हर हर शरदार प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतास है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रैग जीवे त्रैग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन दुर मस्तक लिख्या लिखास।

पंजवां काही रे मन चितवाय उद्यम जा आहर हर जियो परया शैल पत्थर में जंतो पाई दांका रिजका गय कर तरया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ठ हरिया रहाऊ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरया सैर सैर रज कसंबाही ठाकुर काही मन पो करया उडे उड़िया वैसे कोसा तिस बाछे बचरे शरिया तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन महे सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सुधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सत बल जाइए तेरा अंत न पार भरिया।

डूबियले। मान एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलया रहो। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जन तू ना ही विसरया। आस्था महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अबर काज तेरा कितै न काम। मिल साध संगत बज केवल नाम, सरंजा मिलाग भव जल धरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै राउ, जप तप संजम धर्म न कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा, पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दोष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ द मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब कर तारा। मोर अच्छा निज कर दै करे आए, सब बैरन कौ आज संगरे आए। पूर्ण होए हमारी आसा, दूर भजन की राय प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम दे पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरे आए, मरण काल का त्रास निबरे आए। हू जो सदा हमारे पछा, सरियस्तो जू करे हो रक्षा। राख ले हो मुझ राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जबन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जबन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहीं हमारा। जबन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंजर सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, गट गट के बट बट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा दर्द तब दे अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही तेरे

महामूढ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो चेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं भूपा।

सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आदि जुगाद स्वरूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संग्रो दुष्ट जिते उठ बत उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तो जताव शरणी परे दिन के दुष्ट दुखता वै मरे पुरख जबन पग परे तिहारे दिन के तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा हुई ताए सब काला दुष्ट रष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तन कमो हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्व सक न कोई।

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों तां गावो हरी के रामान जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किस है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह। गुरु स्वारी शास्त्र लगियो उतर गुरबाणी की विचार गुरु इतिहास जो भी कुछ है इस सब मिश्री की डली वांगू जिमें मिश्री की डली जिड़े पासों मूह में पाओ उन्हें मिठास देनी है। इसी तरह गुरु की बाणी गुरु साहबान का जीवन इतिहास उन्होंने गुरु सिखा का जीवन इतिहास जिन्हों ने गुरु महाराज के पाए हुए पूर्णिया से चल के सिखी अपने जीवन में तारिया संसार में नहीं मिलेगी। तो जे गुरु सिखा के जीवन इतिहास को जाणू नहीं होवोंगे असी अवेसले हो जावे ढिले हो जाए। इसलिए ये तिने सोमे हैं भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ी प्रेरणा भरी बात कही कुरबाणी तिन गुरसिखा पाओ भगत गुरपुरब कर। मैं उन्होंने गुरसिखा तो कुरबान जाना जेडे प्रेमा भगती के नाल गुरु के पुरब मनाते हैं तो क्योंकि संगत अपने नियम मुताबक सहजे सहजे आती है तो उन्नी देर आप सिद्ध गोष्ठ बाणी विचों चल रही विचार लड़ी में शामिल हो जाइए। रात असी गुरु कृपा द्वारा इथे तक पहुंचे सी कि गुरु के सिख ने गुरु जी नजर में प्रवान होने वास्ते और इस संसार समुद्र नु सौखियां तरन वास्ते की करना। तो 46 नंबर पौड़ी में महाराज ने फरमाया हे योगियो हों मैं विचों खोवे बोलो दूजा मेट एको होवे जग करड़ा मन मुख गावार शब्द कमाई है।

पूर्ण ज्ञान, पूर्ण का मतलब है मुकम्मल, जदों ये निश्चा हो जाए। हम देखो ना गुरु इतिहास में पता नहीं किनिया साखियां जो मैं सुनाने लगा तो बहुत समा चाहिए। कहते ने गोविंदवाल अठे पैर लंगर चलता, गुरु महाराज का हुक्म सी कि लंगर छकन वाली संगत जदों आउण तो हट जाए, भाव कोई ना होवे तो फिर जिहड़ा लंगर बचे वह बेजमान पशुआं नूं पा दे, जिहड़ा उन्हां दी लोड़ तो बच जाए वह ब्यासा नदी विच पा दिओ मच्छियां नूं। ते बड़े स्याणे बंदे विचों मेरे कहिंदे सच्चे पातशाह जिहड़ा बचेगा वह कल काम आ जाए। ते गुरु अमरदास जी हस के कहन लगे जिन्हें अज दिता वह कल नहीं देगा, हुण इहदे ते निश्चा ते करना पवेगा, निश्चा ना होण करके ये मुश्किल पैदा हो। गुरु ने तो अनेक प्रमाण दे के समझाया, भाई चिंता ना करो, चिंता ना करो, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो,

गैलात खोपड़ी सी खोपड़ी सी पर केस कतल करवाए हाथ झूठे चरखड़िया चरखड़िया पर न

बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम गव रही है। अखां तो बाद जबान दी गल, रसना दी गल करन लगे हैं। रसना रसा दी खा, रसना बोलन दे तत्पर। जबान में परिपूर्ण परमात्मा ने दो कम प्रदान किए ने, बोल सकती है, रस माण सकती है। कई दफा जिसकी जबान की शक्ति कमजोर होवे लड़खड़ा के बोलता है।

ये दो शक्तियां रखती है, बोलना रस मानना। बोल के दूसरे नाल संबंध जुड़ता है, रस मान के पदार्थों नाल संबंध जुड़ता है। रस ही ना हो तो कुछ खाण नू जी नहीं करेगा, और बोल ही ना सकिए तो संबंध नहीं जुड़ेंगे, संबंध नहीं जुड़ेंगे, रिश्ता नहीं जुड़ेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते ने, मोह के बोलन बोलिए की बोलिए, जित सुन धरे प्यास। ऐसा भी बोलना है, बोलिए, बोलन विच प्यार टपके, बोलन विच मधुरता टपके, बोलन विच दूर दृष्टि टपके, बोलन विच गहराई होवे। जितनी गहराई होवेगी उतने संबंधों में गहराई हो जाएगी, वो बोल कर देंगे। जितने बोल दूर तक जा सकते हैं, भाव जिन्नी बोलों में दूरी होवेगी उतनी दूर के संबंध जुड़ेंगे। बोलों की बड़ी भारी महानता है, बल्कि इंज कह दईए, अगर मनुख दे कोल बोलना ना होवे जगत दे सारे संबंध रिश्ते बन नहीं सकते। बोल के ही तो संबंध बनते हैं और बोल के ही टुटते हैं। एक बोल बोले तो ओपरा मनुख भी अपना हो गया, पर एक बोल बोले है भरा भी दुश्मन हो गया, मित्रता भी टुट गई है। अगर एक बोल बोल के एक ओपरे नू अपना बनाया जा सकता है, ऐसे भी जगत विच बोलने बोलिए परमात्मा अपना हो जाता है, ईश्वर अपना हो जाता है। बोलां दी बड़ी भारी महानता है, बोलां दी बड़ी अपनी गल है। कहिंदे ने ओ जो परिपूर्ण परमात्मा प्रकाश रूप है, उस तो भी जड़ी सब तो पहले क्रिया प्रगट हुई है बोल, बोलना एक कृत है परमात्मा का बोल। तो प्रश्न खड़ा होता है, परमात्मा की बोले है? बल्कि साढ़े देश के ऋषि मुनि और दुनिया के अवतारी पुरुष ऐसा कह रहे हैं कि सारा संसार उसके बोल तो आया है, उसके वचन तो आया है। जैसे शक्तिशाली मनुख वो बोल रहे हैं तो हजारा मनुख कम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हजारा मनुख सलाम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हजारा मनुख चल पे ने। एक बोल हजारा मनुख चल पे, एक बोल हजारा मनुख कम कार दे जुट गए, एक बोल हजारा मनुखा दे हाथ रुक गए, एक बोल हजारा मनुख सलाम पे कर दे ने। परमात्मा का एक बोल जिस तो सारा ब्रह्मंड बन गया, सारी कायनात बन गई। गालबन धर्म का प्राचीन इतिहास वध तो वध जो उपलब्ध है वो 5000 साल पुराना है। वेद 5000 साल पुराने ने, इस तो पिछे दे कोई धर्म ग्रंथ मिलते ने। वैदिक ऋषि ऐसा कहते ने, परमात्मा तो एक धुन होई कि ओम ओम, जगत बन गया, संसार भी सिरजना हो गई। वाल्मन 2500 साल पहले हुए ने स्वामी महावीर जैन धर्म दे बानी। उन्हां दा फरमान ओंकार ब्रह्मंड दी धुनी है और सारा आकार ओंकार को होया। क्रिश्चियनिटी नु जन्म देण वाले ईसाईयत दे जन्मदाता यसु मसीह, उन्हां दा कहना लोगोस नाम दी धुनी ब्रह्मंड दी धुनी है। खुदा तो ए धुन होई जगत बन गया, संसार दी सिरजना हो गई। इसे तरह का बड़ा

तेन निपांग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कमतै स्यों मन भंग पौड़ी दोवें तरफा उपाई एक वरतिया वेद बाणी वरताई अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाठा दोवें विच धर्म फिरै रह बारिया मनमुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी निश्चो दरगाह हारिया गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया ते भगत तुद भाम दे सच्चे नाए प्यारिया सतगुर सेवन अपना तिन्ना विटों हो वारिया सलोक महला तीजा नवयो नवे आया वरसै लाए झड़ी नानक पाणे चलै कंत कै तो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघै हाथ किस नाही जिन इह मेघ पठाया तिस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब कर्म पलाहा करी पौड़ी सोहर सदा सरेवी है जिस करत न लागै वार आडाने आकाश कर खिन मह ताहे उसारन हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार मनमुखी अग्गै लेखा मंगी है बहुती होवै मार गुरमुख पत सियों लेखा निबड़ै बख्शे सिफत भंडार उथै हाथ ना अपड़ै कूक ना सुनिए पुकार उथै सतगुर बेली होवै कड ले अंती वार इना जनता नो होर सेवा नहीं सतगुर सिर

आए अन तन उपजे बहु घणा कीमत कहन ना जाए। नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देंदा रिजक संभाहे। जित खादे सुख उपजे फिर दुख ना लागे आए। पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू।

पूर्व लिखिया कमाई हों बलिहारी तिनको जो हर चरनी रहे लिवलाई ज्यो जल मह कमल अलिपत है ऐसी बनत बनाई से सुखिये सदा सोहने जिन विचो आप गवाई तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाई सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए तिसै सरे वेहो प्राणी हो तिस बिन अवर ना कोई गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए सहसा मूल ना हो गई सब चिंता विचों जाए जो किश होए सो सहजे होए कहना किसु ना जाए सच्चा साहिब मन वसै ता मन चिंदिया फल पाए नानक तिनका आख्याप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उरतार हर अमृत पीवे है सदा रंग राते हमै तृष्णा मार अमृत हर का नाम है वरसै कृपा तार नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मरार पौड़ी अतुल क्यों तोली है बिन तोले पाया ना जाय गुर कै शब्द विचारी है गुण मह रह समाई अपना आप आप तोल सी आपे मिले मलाई तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाय हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाई जगत मुस्तै अमृत लुटी है मनमुख बूझ ना पाई विण नावै नाल ना चल सी जासी जन्म गवाए गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया दूतां का किस ना वसाए सलोक महला तीजा बबीहा ना बिललाए ना तरसाए एहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मन्या ते खोतरै चढ़ै चवगल वन मह

जल थल चहो दिस वरसदा खाली को थाओ नाही इतै जल वरसदै तिख मरहै भाग तिना के नाही नानक गुरमुख तिन सूझी पई जिन वसिया मन माही पौड़ी नाथ जती सिद्ध पीर किनै अंत ना पाया गुरमुख नाम त्याए तुझै समाया जुग शक्ति ही गुबार किस ही पाया जला बिंब असराल तिनै वरताया नील अनिल अगम सरजीत सबाया अगन अपाई वाद भुख तिहाया दुनिया कै सिरकाल दूजा पाया रखै रखनहार जिन शब्द बुझाया सलोक महला तीजा एहो जल सब तै वरसदा वरसै पाए सुपाई।

चमकिया वुठा शह बरलाई जित वुठै अन तन बहुत उपजै जा सहो करे रजाई जित खादै मन तृप्ति है।

सब सह दे आधार, सब मह एक वर्तदा, सिर सिर करे विचार, गुरमुख आप विचारी है।

भगवान पौड़ी आपे जगत उपायक है गुण औगण करे विचार त्रै गुण सर्व जंजाल है नाम ना धरे प्यार गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगहा होए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार।

रात ना विहावी साकता जिन्ना विसरै नाऊ राती दिन सुसहेलिया नानक हर गुण गाओ महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मतन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चै दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोहा आई जे सतगुर अगै घालिया ओहे ना सकै जमकाल सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख विण नावै कूड़ियार फिर है बेतालिया पशु मानस चम पलेते अंदरों कालिया सबो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया नानक

गुर कै सहज सुपाई मेघ वर्ष दया कर गुड़ी छह बरलाई बबीहे कूक पकार रह गई सुख वस्या मन आई नानक सो सलाही है जे देंदा सबना जिया रिजक समाय महला तीजा चात्रक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीतै तिख जाए दूजे पाए परमिया अमृत जल पल्लै ना पाए नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिलै सुभाए नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहे आसमाए पौड़ी एक वन खंड बै सह जाए साधना देवही एक पाला कत्तर भन शीतल जल हेवही एक भस्म चढ़ावै अंग मैल ना धोवही एक जटा बिकट बिकराल कुल घर खोवही एक नग्न फिरह दिन रात नींद ना सोवही एक अगन जलावह अंग आप विगोवही विण नावै तन चार क्या कह रोवही सोहन कसम द्वार जे सतगुर सेवही।

ओंकार नदरी सतगुर पाई नदरी उपजै प्यार नानक साहिब मन वसै विचों जाहे विकार पौड़ी एक जैनी उजड़ पाए तुरों खवाया तिन मुख नाही नाम ना तीरथ नहाया हथी सिर खुहाए ना पद कराया कुचल रह दिन रात शब्द ना पाया तिन जात ना पात ना कर्म जन्म गवाया।

है छज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाहि नानक हुक्म ना जापई किथे जाहि समाहि फसल आहारी एक नाम सामणी सच नाम मैं महदूद लिखाया खसम कै दर जाय दुनिया के दर के तड़े केते आवह जाहि केते मंगह मंगते केते मंग मंग जाहि महला पहला सौ मन हस्ती घ्यो गुड़ खावे पांच सै दाना खाए डकै फूकै खे उड़ावे साही गए पछताए अंधी फूक मुई देवानी खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैण चढ़ी बिल लाई खसम भावे।

साहे गए पछताए अंडा किसनो भूख सुनावे खसमे मूल ना पावे आक सियो प्रीत करे अक तिड्डा आक डाली बह खाई खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाई खुदाई नानक दुनिया चार दिहाड़ी सुख की तै दुख होई गल्ला वाले हैन कनेरे छड ना सकै कोई मक्खी मिठे मरना जिन तू रखे तिन नेड़ ना आवे तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवनहार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमती विचार इक नानू पुद एवें भावदा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेवंदे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल कटे दिन काल सिजे काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा झक झक पया झेर पिछे रोवह लियावह फेर बिन बूझे किस सूझे नाही मोया रोहे रोंदे मर जाही नानक खसमै एवें भावे तेई मोए जिन चेतना आवे महला पहला मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैर वादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रुली कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्ला गोईया कीता चाहो रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते हुए सखाई बाज गुरु जगत बहराना नावे सार ना पाई सतगुर सेव है से परवान जिन ज्योति ज्योत मलाई सो साहिब सो सेवक तेहा जिस पाणा मन वसाई अपने पाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिखिया कदे ही रजै नाही मूरख भुख ना जाई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई सतगुर सेवे सो सुख पाई जिसनो कृपा करे रजाई सलोक महला पहला शर्म धर्म दोए नानका जे धन पल्ले पाई सो तन मित्र ना कांधी है जित सिर चोटा खाई जिनकै पल्ले धन वसै तिनका नाओ फकीर जिनकै हृदय तू वसै ते नर गुणी गहीर महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगह दुख नानक सच्चे नाम बिन किसै ना लथी भुख रूपी भुख ना उतरै जां देखा ता भुख जेते रस शरीर के तेते लग है दुख महला पहला अंधी कमी अंध मन मन अंधै ताने अंध चिक्कड़ लाया क्या थी है जां तुटे पत्थर बंद बंद तुटा बेड़ी नहीं ना तुलहा ना हाथ नानक सच्चे नाम विण केते डुबे साथ महला पहला लख मन सोयना लख मन रूपा लख साहा सिरता लख लश्कर लख वाजे नेजे लखी घोड़ी पातशाह जिथे शायर लंघना

पौड़ी चिकना गली जंजीर बंदर बाणी है बदे छुट है सच सच पछाणी है लिखिया पल्ले पाए तू सच जानी है हुक्मी हुए नबेड़ गया जानी है पौजल तारन हार शब्द पछाणी है चोर जार जुआर पीड़े कहानी है निंदक लाए तबार मिले हड़वाणी है गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानी।

नानक गुरमुख जानिए कल का एहो नियाउ महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाउ फांदी लगी जात फहाइन अग्गै नाही थाउ सो पढ़िया सो पंडित बीना जिनी कमाना नाउ पहलो दे जड़ अंदर जमे ता उपर होवे शाउ राजे सिंह मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते चाकर नहिंदा पाइन कहाउ रात पित कुत्ते हो चट जाहु जिते जिया हो सी चार नकी वड्डी लाइत बार पौड़ी आपे पाए मेदनी आपे करदा सार पै बिन भरम ना कटिए नाम ना लगे प्यार सतगुर ते पौ उपजे पाइए मूख द्वार पै ते सहज पाइए मिल ज्योति ज्योत अपार पै ते पैजल लंघिए गुरमति विचार पै ते निरपो पाइए जिसदा अंत ना पारावार मनमुख पै की सार ना जाननी तृष्णा जल ते करह पुकार नानक नावै ही ते सुख पाया गुरमति उरतार श्लोक महला पहला रूपे का मैं दोस्ती भुखे साधे गंड लबे माले कुल मिल मिचल ऊंगे सौड़ पलंग भौके कोप खुआर हुए फक्कड़ पिटे अंध चुप।

संगी है आओ कट रुदे राहा गलियां रोकियां सच्चा वी परवाह शब्द संतोखियां गहर गंभीर अथाह हाथ ना लबई मोहे मोहे चोटा खाहु विण गुर कोई ना सुट सी।

नानक आप अकथ अकथ की कथा सुने, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान सदा सुख हुए। महला पहला।

जीवत मरत रह परवान हुक्मे बूझे तत पछाण इहो प्रसाद गुरु ते जाने हुंदा पड़ियग नानक जान ना हो ना मैं जूनी पान पौड़ी पड़िया नाम सलाह होर बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथिया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम वसार सावन तत्या बलदी अंदर तेल दुबदा कत्या आया उठी खेल फिर उवत्या नानक सच्चै मेल सच्चै रत्या सलोक महला पहला पहला मासो निम्मिया मासै अंदर वास जियो पाए मास मुहि मिलिया हड चम तन मास मासो बाहर कढ़िया मम्मा मास ग्रास मुह मासै का जीव मासै की मासै अंदर सास वड़ा हुआ व्याहिया कर ले आया मास मासों ही मास उपजे मासों सबो साख सतगुर मिले है हुक्म बुझिए ताको आवे रास आप छुटे नह छूटी है नानक बचन बनास महला पहला मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमह पाप समाणी गैंडा मार होम जग पिए देवत्यां की बाणी मास छोड़ बैस नक पकड़ है राती मानस खाणी फर कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे स्यों क्या कहिए कह ना कहया बूझे अंधा सोए जे अंध कमावे किस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मास ना खाही स्त्री पुरख जान इस मेला उत है मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझे नाही चतर कहावे पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मास होए जीए लया वसेरा अपाख पक है पाख तज छोड़ है अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझे नाही चतर कहावे पांडे मास पराणी मास कतेबी चहो जुग मास कमाणा जज काज व्याह सहावे उठ है मास समाणा स्त्री पुरख निपजह मासो पात चाह सुल्ताना जे ओए दिस है नरक जांदे ता उनका दान ना लेना देंदा नरक सुर्ग लेंदे देखो एहो तिंगाना।

तोयो त्रिभवन गन्ना तुआ आख हो बहु बिदह छा तू है बहुत बेकारा इते रस छोड़ हो सन्यासी नानक कह विचारा पौड़ी हो क्या आखा एक जीव तेरा अंत ना कि नहीं पाया सच्चा शब्द विचार से तुझ ही माहे समाया एक भगवान वेस कर भ्रम दे बिन सतगुर किने ना पाया देश दसंतर भव थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया एक थिर सच्चा सलाहना।

जिन मन सच्चा पाया सलोक महला पहला नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल विष सब कारण करता करी जिस खवाले तिस महला दूजा नानक दुनिया किया वड़ियाईया अग्नि से तीजाल इनी जली नाम वसारिया एक ना चलिया नाल पौड़ी सिर सिर हुए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हाथ नबेड़ तू है मन पाया काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाणा कन चढ़िया नचसी सतगुर बोहत बेड़ सच्चा रखसी अगन पख है पड़हाड़ अन दिन पखसी फाफा चुगै चोग हुक्मी छुटसी करता करे सो होग कूड़न खुटसी सलोक महला पहला घर में है घर दिखाई दे सो सतगुर पुरख सुजान पंच शब्द धुन कार धुन तह बाजे शब्द निशान दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान तार घोर बाजिंतर तह साच तख्त सुल्तान सुखमन कह घर राग सुन सुन मंडल लिवलाए कथ कथा बीचारी है मनसा मनह समाए उल्ट कमल अमृत भरिया इहो मन कतहु ना जाए अजप्पा जाप ना विसरे आद जुगाद समाए सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज घर वास शब्द खोज इहो घर लहै नानक ताका दास महला पहला किल मिल बिसियार दुनिया फानी कलूब अकल मन गोर ना मानी मन कमीन कम तरीन तू दरियाओ खुदाया एक चीज मुझे दे अवर जहर चीज ना पाया पुराब खाम पूजे हिकमत खुदाया मन तवाना तू कुदरती आया ठग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़े सवाया आतस दुनिया फुनक नाम खुदाया पौड़ी नवी महला पंजवा सबो वरतै चलत चलत वखाणिया पार ब्रह्म परमेश्वर गुरमुख जानिया लथे सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भये निकाणिया सिमर सिमर दातार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर छावाणिया आपे बख्श मलाए सद कुर्बाणिया नानक लए मलाए खसमै पाणिया सलोक महला पहला धन सो कागद कलम धन धन भांडा धन मस धन लेखारी नानका जिन नाम लिखाया सच महला पहला आपे पट्टी कलम आप उपर लेख पे तू एको कही है नानका दूजा काहे कू पौड़ी तू आपे आप वरतदा आप बनत बनाई तुद बिन दूजा को नहीं तू रहे आसमाई तेरी गत मित तू है जानदा तुद कीमत पाई तू अलाखे गोचर अगम है गुरमत देखाई।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: गुरु प्यारी सात संगत जी, राग बिहागड़ा बड़ा मधुर प्रभावशाली राग है। इस राग की उत्पत्ति बिलावत हार तो मनी गई है। इस राग विच दोनों निषाद अते बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। जाति औरफ संपूर्ण है ते गायन का समा राग का दूजा पहर है। वादी सुर गा ते संवादी सुर नी है। राग का मुख अंग इस तरह है, कोमल नी धा पा धा गामा गा रे सा। इस राग विच गाए जाने वाले शब्द की बंदिश ताल झप ताल विच तालबद्ध है। हुन बिने कौर जी इस राग विच गाए जाने वाले शब्द के बारे तुहानू विस्तार नाल दसंगे।
3: प्यारी साध संगत जी, बहागड़ा राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के तरतीब अनुसार सातवें नंबर ते आंदा है। इस राग विच श्री गुरु रामदास जी का उच्चारण किया हुआ शब्द के चार छंद हैं। अज असी दूसरे छंद का गायन करांगे। सार रसना धन धन है मेरी जिंदड़ी है। इस छंद विच गुरु रामदास जी शरीर के इंद्रियां की वडियाई करते हुए कह रहे हैं कि मेरी प्यारी ये जिंद है, रसना भाग जीव धन है जो कि प्रभु दे गुण गाउंदी है, नाम जपदी है। ओ कान भी सोभनीक हैं जिहड़े तेरे कीर्तन नूं सुणदे रहिंदे हन, अते ओह सी भाग सिर ते मत्था धन है, भागां वाला है ते पवित्र है जिहड़ा गुरु दे चरणां च जा लगदा है। छंद दे आखिर विच गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि उस गुरु तो कुर्बान जांदा हाँ जिसने नानक नूं परमात्मा दा नाम चेते करवाया है। भाव विच जिस परमात्मा ने सानू सोहना शरीर बख्शिया है ते कन अखां रसना दिते हन, ए उस वाहिगुरु दे लेखे ही लगन तां ही चंगे हन, नहीं तां सब त्रिग है। बिन सेवा त्रिग हाथ पैर होर निसो करनी। आओ संसारे ही बड़े प्यार नाल सबल सबल करिए।

परम सम्मान योग सात संगत जी प्यार सत फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवादी हाँ भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी दे जिन्होंने मनोहर कीर्तन ही आप निहाल किया। आओ भी 25 मिनट वास्ते दास साहब के सामने कीर्तन की हाजिरी भरनगे। उस उपरंत मानयोग भाई साहब भाई अजीत सिंह जी खालसा दिल्ली वाले वो आप जी ने गुर विचारे निहाल करे। प्यार सहित इदा ही सच्चे रहो। जिन्हें संगतान ने लंगर छक लिया है वो प्लीज़ दीवान हल च आ के सज्जन कीर्तन आनंद मान। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू।

मन से करता है। आप टिकार विच बैठे हो, कीर्तन होर करी जाइए, पर आज बच्चों के कंपटीशन प्रोग्राम करके प्रोग्राम थोड़ा जा लेट हो गया साडा। मेरे तो उपरंत कारयोग भाई साहब भाई अजीत सिंह जी हो रहे, उन्होंने भी आप जी दर्शन करने ने। तो शब्द की आखिरी पंक्ति गायन करके

बचन अनाथ सुनाथ गुरु का बचन अनाथ सुनाथ गुरु का बचन अनाथ सुनाथ गुरु का बचन अनाथ सुनाथ गुरु के बचन नरक ना पावे गुरु के बचन Oh, my.

0: केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नू होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

कवन बनेरी तेरी लाली, कवन रंग तू भई गुलाली, प्रीतम पानी ता रंग गुलाल, कहो नानक

फिर लौटन है सभी त्रिमुखवासई दशमी सर्वलोक ग्रंथ लंक लूट ले आऊं पलंग पेश खाना चलाऊं नर्द कर्द मैं बलाऊं जो माते अभमान के रोम नौबत बजाऊं साम मोहरा चलाऊं रोम नौबत बजाऊं साम मोहरा चलाऊं पातशाही लेकर आऊं पातशाही लेकर आऊं तख्त साचे सहबान के ना आप लरू

परमेश्वर सत्यनारायण हर दिन बैन कीर्तन गाया बहुत मैं गाया बहुत मैं गाया हर दिन बैन कीर्तन गाया बहुत मैं

0: तू तो सुनता तेरे सुनी सच्ची पानी
1: तुझे तुम सके तुम सब सुन लिया पर तुझे

पगल समाधान काल माला सिल्क मिलाकन कोई धोती पर पाटन ये चांद ब्रह्म

सहन गुरु को धन गुरु गोविंद सिंह साहेब धन गुरु गोविंद सिंह साहेब।

जिस गोर का शब्द रत्न आचार, जिस गोर का शब्द रत्न आचार, जिस गोर का वाहेगुरु मा

प्यार सत संगत गुरु प्यार सत संगत गुरु प्यार सत संगत पीतर अमृत गोर का शब्द रत्न आचार जिस गोर का शब्द रत्न आचार वाहेगुरु महल में

नदर करे करतार किसनो पितर अमृत कोई जन पाए पितर पितर अमृत कोई जन पाए पितर किस गोरे का शब्द रत्न

दर्शनं प्रयासीदन सराहत चितववंदन नीत कोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत दर्शन देख जीवां गुर तेरा पूरन कर्म हुए प्रभ मेरा एह बिनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखाय माया मोह परम पै पुरले सुतदा राशों प्रीत लगाई इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई इक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई

आदरणी अनादरनाथ युग युग एक होवे। एक दूजी पौ लख हो है लख वै लख वीस लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश इतरा पद पवड़ियां चढ़िया हुई अकीस। सुन गलां आकाश की गीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस। आखण जोर च पैन है जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोई नानक अयोतम नीज न कोए राति रुति थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल। तैस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तैस विच जी जुद के रंग जिन के नाम अनेक अनंत गर्मी गर्मी होई विचार सचा आप सचा दरबार। तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान गच बकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड कायो धर्म ज्ञान खंड काको कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरम काढ़ घड़िया रूप रंग के वेश। केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते अंध चंद सूर केते केते मंडल देश केते सदबुद नाथ केते केते देवी वेश। केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथ नाद विनोद गुड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथ काढ़ कड़िया बहुत अनूप। तां कियां गल्लां कथियां न जाए जे को कह पिछे पछताए तिथ कड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथ कड़िया सुरस दंगे शुद्ध। कर्मखंड की बाणी जोर जिथै और न कोई होर जिथै जोद महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मा माए। ताके रूप न कथने जाहि ना ऊ मरह न ठग जाहि जिनकै राम बसै मन माहे तिथै भगत बसै कै लो करै आनंद सचै मन सोए। सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल उदिथै खंड मंडल वर पंड जे को कथै अंत न अंत उदिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बहारा धीरज सुनियार अहरण मत वीर हथियार। पाओ खलागन तपताओ पांडा पाओ अमृत तत टाल कड़िया शब्द सजी टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दाई दाया खेल सगल जागत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्हें नाम ते आया गए मशक्त काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हें नाम ते आया

पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाल दह रक्षा पूर्ण होए जत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत बारा हमरे दोष्ट सब तुम कावहु आप हाथ दे मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवार सेवक सिख सब कर धारा मोर रक्षा निज कर दे करे सब वैरन का लाज सिंह रहे पूर्ण होए मारी आसा दूर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहो सतम दे पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चन चन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे है मरण काल का त्रास निवरे है हू जो सदा हमारे पछा सरी हस तो जू करे हो रक्षा राख लियो मैं राख नारी साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए कर्म सिन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

संसार एकारूपानूप स्वरूपा रंग पयोराव कहीं भूपायांडज जेरज सिद्ध जगिनी उत्पज खान बहोर रच दीनी कहूँ फूल राजा व बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए जम पव आदि जुगाद स्वरूप सुयम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उभार सिख संग्रो दोष जिते उठ बदत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तुज तब सरणी परे दिन के दोष दुख दवे मरे पुरुष योन पग परे तिहारे दिन के तुम संकट सब टारे

गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथिव गत गायणी। ए मन जंजला चदराई गिने ना पाया चदराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिने परम पलाया माया त मोहनी जने की जंठ गोली पाईया। कुर्बान कीता दिसे बिटो जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन जंजलो चदराई गिने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले हे कुटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले सास तेरे चले नाही तिस नाल क्यों च तलाई है ऐसा कम मूले न कीचै जतंत पछताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कहे नानक मन कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया कि तेरा अपना आप तू जान हे जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणे आखै दा वेख्या सब तू है जिन जग तू पाया कहे नानक तू सदा कम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज।

क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचया, सु हर मन न बसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखया पाया, कह नानक शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर से जतलाया। ए नेत्र मेरे हो, हर तो मैं जो धरी, हर बिन वर्ण देखो कोई, हर बिन वर्ण देखो कोई, नदरी हर निहलिया, हे वे संसार तुम देवी, हर का रूप है रूप नदरी आया। गुर प्रसादी पुजया ता जा विखारे, कहे हर बिन वर्ण कोई, कह नानक नेत्र अंध से सतगुर मिले, आंद बदरा टोई। हे श्रवणो मेरे हो, साचा सुनने नो बठाए, साचा सुनने नो बठाए, श्रीर लाए, सुनो सतबाणी, जत सुनी मंतन हरिया हुआ, रसना रस्त माणी। साचा लख बडाणी दा की गत कही न जाए, कहे नानक अमृत नाम, सुनो पवित्र हो बहो, साचा सुनने नो बठाए। हार जियो गुफांदर रख कै, वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन, नौंद वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए बावनी, एक ना दसवां द्वार दिखाया। कहे अनेक रूप नाव नवनित, ते सदा अंत न जाई पाया, कहे नानक हर प्यारा, जियो गुफांदर रख कै, वाजा पवन बजाया। एह साचा सुहिला साचा कर गावो, गावो त सुहिला कर साचा, जिथे सदा सच दयावे, सचो दयावे जान तुद पावे, गुरमुख जना बजावे। ए सच सभना का खसम है, जिस बख्शे सुजन पावे, कहे नानक सच ला सच कर गावे। आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पैसर से पूरे गुर दे जानी। सुन दे बनीत गे पुवत, सतगुर पर पूरे, बिनवंत नानक गुरचरण लागे, वाजे अनहर तूरे।

हम तिसके सद कुर्बानी सतनाम श्री वाहिगुरु जी ओतना श्री महला तीजा नावै की कीमत मित कही न जाए श्री जन धन जिन एक नाम लिब लाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार नावै की कीमत मित कही न जाए से जान धन जिन एक नाम लिब लाए गुरमत साची

सुनाओ, दुख का निग्रह मिटो जाओ। दाता करता आप देवे करे पुकाओ, तू जानो ही सब सैद लेता जित पुआओ। कर आसन मिटो जाओ, कर आसन मिटो जाओ।

पंखी भोंडल नाड़ पवाई है जंत नानक पौद्या गणत नयंत बंधन बंद पवाए सोए पाया कीर्तन चे सब कोए नच नच हसते चले से रोए उड़ना जाही।

मुसलमाना सिख सरीत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवह विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला अंदर सिंदूर पपार तीर्थ नावे अर्चा।

न आकार हुक्म न कहे आ जाई हुक्म हो बंजी हुक्म मिले बड़ियाई हुक्म हो तुम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शी स एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बार हुक्म न कोई नानक हुक्म जे बुझे तो मैं कहे न कोई।

आद्य नील अनादनाहत जुग जुगे को वेश एक दूजी को लख हो है लख हो लख वीस लख लागेड़ा किया एक नाम जगदीश द्रापद पबड़िया चढ़िया हो कीस सुन गलाया काश की गीटाया रीस नानक नदरी पाई है गूढ़ी गूढ़ा ठीस आखण जोर ज पैन है जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजवाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगति छुटा संसार।

अंदले ना विसारिया मन मुख अंधगवार आवण जान ना चुकी मर जन्मे हुए खुआर चंदन मूल अनाया कुंगू मांग संदूर चोआ चंदन बौकना पाना ना कपूर जे तन कंत न पावी चा सब अडंबर कूल सब रस भोगन बाद है सब श्रृंगार विकार जब लग शब्द न भिजिए क्यों हो सो है गुरुद्वार नानक संत सुहागणी जिन शाह सह नाल प्यार श्री राग महला पहला सुंजी दे डरावनी जा जियो विचों जाए पाए बुलंदी विज भी तू ना निकलो सो काए पांचे रुन्ने दुख परे विनसे दूजे पाए मुड़े राम जपो गुण का सार हमे ममता मोहनी साव मुठी अहंकार रहाओ जिन्नी नाम बिसारिया दूजे कारे लग दुबदा लग पचमुए अंत तृष्णा अग गुर राखे से उबरे मुहूर मुठी कंधे ठग मुई प्रीत प्यार गया मुआ वैर विरोध तंदा थका हो मुई ममता माया मुक्रोध कारम मिले सच पाइये गुरमुख सदा निरोध सच्ची कार सच मिले गुरमुख भलाए पाए सो नर जमे नाम रह ना आवे ना जाए नानक दा प्रदान है सो दर गा पैंदा जाए श्री राग महला पहला तन जल बल माटी पया तन जल बल माटी पया मन माया मोह मनूर अगन फिर लाग पै कूर जावे तूर मिलन शब्द पर माइये डुबदा डुबदा डोबे पूर मन रे शब्द रहो चितलाए जिन गुरमुख नाम न बुझया मर जन्मे अवे जाए रहो तन सुचा सो आखिए जिस में साचा नाओ पै सच राती देहरी जेबा सच सुओ सची नजरी नजर निहालिए बोर न पावे ताओ साचे ते पवना पे रहा पवने पे जर हुए जालते त्रिवन साजया कट कट जो थमोए निर्मल मैल आता थिए सागर ते पत हुए ये मन सच सात संतोखया नजर करे तस्मा है पांच भूत सच पैर ते जोत साची मन माहे नानक अगण विस्तरे गुर रखे राखे पत ताहे श्री राग महला पहला नानक बेड़ी सच की करिए गुरु विचार इतिहावेक जावी पूर परे अहंकार मन हठ मतनी बुद्धिये गुरमुख सच सो तार गुर बिन क्यों तरिए सुख होए गुर बिन क्यों तरिए सुख होए ज्यों पावे त्यों रख तू मैं और न दूजा कोई रहो आगे देखूं दौ जलू पाछे रहो अंगूर जिस ते उपजे तिसे बिनसे कट कट सच भरपूर आपे मेल मिलावी सचे मेहर दूर साए साए तुझ संभला कदे ना विसार्यो ज्यो ज्यो साहेब मन वसे गुरमुख अमृत दियो मन तन तेरा तू तनी गर्व निवार समूह जिन ए जात पाया तिर पवन कर आकार गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुग्ध गवार घट घट जोत निरंतरी बुझे गुरमत सार गुरमुख जुनी जानिया तिन कीते सवास सच्चे सच्ची रल मिले सच्चे गुर गुण परगास नानक नाम संतोखिया जियो पिंड प्रभ पास श्री राग महला पहला सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ए जब लग जो साथ है सास है तब लग ए तन दे बिन गुण कामना आवे चह तेरी तन थे मेरे मन लैला कर जाए गुरमुख नाम तलाइए हमे नही पारे रहो सुन सुन गंडन गंडिये अख लिख पढ़ बुझे पार तृष्णा न से अगली हमे रोग बिकार ओहो बेपरवाह तोलवा गुरमत कीमत सार लख सण बुझे करी लख प्रीत मिलाप बिन संगत साधना तापी बिन नावे दुख संताप हर जप जीरे छुटिए गुरमुख तीने आप तन मन गुर पै वेचिए मन दी आसर नाल तिर भवन खोज ढंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल श्री राग महला पहला मारने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्वजनिया प्रतिपाल ही लेखे सास ग्रास
अंतर गुरमुख तुम बसे ज्यों पावे त्यों निरजास वीरे राम जब तमन का मान अंतर लागे जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ अंतर की गत जानिए गुर मिलिया संक उतार मुया जित कर जाइए चित जवंदिया मर मार आन हद शब्द सहावने पाइये गुर विचार आन हद जानी पाइये ता हो में हो एक बनास सतगुर सेवे अपना हो सतगुर करवाने तास खाड़ दर गै पहनाइये मुख हर नाम निवास जा देखा ता रव रहै सिर सबसी का मेल त्रह गुण बंदी जोहरी जो आया जग सो खेल वे जोगी दुख बिछड़े मन मुख रह ना मेल मन बरागी कर बसै सब पैराता होए ज्ञान महारस भोगवे बहुड़ब भूख न होए नानके मन मार मिल पी फिर दुख न होए श्री राग महला पहला ए मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगलवाण शब्द न पीजे सकता दुरमत आवन जान साधु सतगुर जे मिलैता पाइये गुणी निधान मन रे हम छोट कमान हार गुर सरवर सेव तू पावे दरगह मान रहाओ राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान साव सुख हर रस भोगने संत सवा मिल ज्ञान नित एहन सर प्रभ सेव्या सतगुर दिया नाम कुकर कूर कमाइय गुर निंदा पचे पहचान परमे पूला दुख कनो जब मर्क मार करे खोलो हान मानमुख सुख ना पाइये गुरमुख सुख सुभान एथे तंद पटाइये सच लिखत प्रवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी प्रधान नानक नाम ना विसरे करम सच्चे निशान श्री राग महला पहला एक तिल प्यारा विसरे रोग बड़ा मन माहे क्यों दरगाह पत पाइये जा हर ना बसे वन माहे गुर मिलिया सुख पाइये अगन वरे गुर माहे मन रे एन सार गुण सार जिन खिन पल नाम ना विसरे ते जन बिरले संसार रहाओ ज्योति ज्योत मिलाइये सुती सुत संजोग हिंसा हो में गत गए ना ही हिंसा रोस होग गुरमुख जिस हर मन बसे तिस मिले गुर संजोग काया कामन जे करी भोगे भोगन हार तिस ने ना कीजी जो दिसे चलन हार गुरमुख रवै सुहागड़ी सो प्राव से जपतार चारे अगनवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुरु मीत कर सच पावे तर गैब जाए श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरम तले हर बोल मन सच कसवटी लाइये कुलिये पूरे तोल कीमत कर ना पाइये रिद मानक बोल अमोल पाई रे हर हीरा गुर माहे सतसंगत सतगुर पाइये एन सत सलाहे राहो सच बखर तन रास लै पाइये गुर प्रसाद ज्यों अग्न मरे जल पाइये त्यों तृष्णा दस दास जम जंदार न लगी त्यों इं पौजल तरे तरास गुरमुख कूड़ न पावी सच रते सब पाए साकत सच न पावी कूड़े कूड़ी पाए सच रते गुर मेलिया सच्चे सच तक समाए मन में माणक लाल है नाम रतन पदार्थ ही हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाइये दया करे हर हीर श्री राग महला पहला परमे पाहे ना भिजवै जे पवै तिस अंतर देस अंतर मैं न उतरे त्रिग जीवन तिग देस होर कितै भगत न होवी बिन सतगुर के उपदेश मन रे गुरमुख अग्न निवार गुर का कहया मन वसे होमे तृष्णा मार रहाओ मन मानक निर्मूल है राम नाम पत पाए मेरे सत संगत हर पाइये गुरमुख हर लि बुलाए आप गया सुख पाया मिल सलले सल समाए जिन हर हर नाम न चेत्यो सो औगण आवे जाए जिस सतगुर पुरख न पेट्यो सो पवजल पचे पचाए ए मानक जियो निर्मूल है
यूं कौडी बदले जाए जिना सतगुर रास मिले से पूरे पुरख सजान गुरमिल पौजल लंगिए दरगाह पात प्रवान नानक ते मुख उजले धुन उपजे शब्द निशान श्री राग महला पहला मांझ करो बंजारियो बखर ले संभाल तैसी वस्त वसाइए जैसी निभे नाल अगे सास जान है लैसी वस्त संभाल पाई रे राम को चित लाए हर जस बखर लै चलो सह देखे पत्याए रहो जिन्ना रास ना सच है क्यों तना सुख होए खोटे वंज वणजिए मन तन खोटा होए फाही फाथे बिरग जो दुख कणो नित होए रोए खोटे पोते ना पवै तिन हर गुर दस ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाइए गुर के शब्द सला राम नाम रंग रत्या पारना परम नुतना हर जप लाहा अगला निर्भो हर मन महा श्री राग महला पहला कर दूजा तन जोवन हर फुलड़ा नाठीड़े दिनचार पबन केरे पत ज्यो टल टुल जमन हार रंग मान लै प्यारिया जा जोवन नौ हुला दिन छोड़ थके प्या पराना चूला राहो सज्जन मेरे रंगले जाए पुछे जीरान हाँ पी वंजा डूबनी रोवा चीनी बाण की ना सुनी ही गोरिए आपन कन्नी छोए लगी आवे सोरे नितना पहिए होए नान सुती पहिए जान बिरती सन गुणा गवाई नठड़ी अवगन चली मन श्री राग महला पहला कर दूजा आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवे चोलड़ा आपे से जुगतार रंग रता मेरा साहेब राव रहा भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मरकर आपे अंदर लाल आपे वो बदरंगला सुखिए मेरा लाल नितर होवे सुहागनी देख हमारा हाल प्राण बे नानक बेनती तू सबर तू हंस कौल तू है कविया तू है आपे बेख बिगस श्री राग महला पहला का तीजा ए तन ताती वीज कर्मा करे सलल अपाओ सरी रंग पानी सारंग पानी मन किरसान हर दे जमाए लै इओ पावस पद निर्वाणी काहे गर्व समूहे माया पित सुत सगल कला कलतर माता तेरे होना अंत सखाया रहाओ देखे बकार दुष्ट किरखा करे इन ताज आत्मे होए त्याई जाप ताप संयम होए जब ले रखे कमल विकसे मुद असम असरम माई बीस सप्तारा तो वास्त्र संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे अठ दस अठारह मैं परम्परो चीने कहे नानक एव एक तारा श्री राग महला पहला का तीजा अमल कर धरती बीज शब्दों कर छतकी गाव नित दे पानी होए किसान ईमान जमाए लै पिस दूध क मूड़े जानी मत जान सह गली पाया माल कै माने रूप की शोभा एक विधि जन्म गवाया रहो ऐव तन चीकरो ए मन मेंढ को कमल की सा नहीं मूल पाई पौर औसाद नित पाख्या बोले क्यों बुझे जा नह बुझाई आखन सुनना पौन की बाणी ए मन रता माया खसम की नजर अंधेले पसंदे जिन्नी कर एक त्याया ती कर रखे पांच कर साथी नाव सतान मत कट कजाई नानक आखे जय पै चलना माल तन पितह को संजयाई श्री राग महला पहला का चौथा सोई मोला जिन जग मलाया मोलाया हार किए संसारो ऐब का खाक जिन अबंद रहाई तन सृजन हारो मरना मूला मरना की ती कतारो डरना रहाओ ता तू मूला ता तू का जी जाने नाम खुदाई दे बहुत तेरा पढ़िया होवे को रहे ना पढ़िए पाई
सोई काजी जिन आप तजया आ एक नाम किया आधारो हैपी हो सी जाए न जासी सच्चा सुजनहारो। पांच भक्तन वाद गुजारे पड़े कतेव कराणा नानके आखे गोर सदेही रहो पीना खाना। श्री राग महला पहला कर चौथा एक सवान गुरे सवानी नाल पालके पौके सदा अबे हाल कूड़ छुरा मुठा गुरदार ना तानक रूप रहा करतार मैं पत की पंग ना कानी की सार कार। हों बिगड़े रूप हरहा बिकराल एक तेरा एक नाम तेरे सारे संसार मैं यह आस एहो आधार रहो। मुख निंदा आखा दिन रात पार कर जोही नीत नात काम करो तन वसे चंडाल तानक रूप कदह कतार फाही सुत मलुकी वेश न हो ठगवाड़ा ठगी देख ठगी देख खरा सयाना बहुता पार तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम होर हो क्या मुँह देसा दुष्ट चोर नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार। श्री राग महला पहला कर चौथा

जहा काहे जी कर चतराई देवे देवे टलना पाई राव तेरे जी जिया का तुह कित को साव आवे रोहो जे तू साव आवे रोहो तू ना का तेरे ओहो असी भूल बिगाड़ बिगारा भूल तू नदरी तंदर तोल तोल जा करनी ता पूरी मत करनी बाजू कट्टे कट भैन सुनान प्यानी कैसा होए आप छाने बुझे सोए गुर पर साध करे विचार सो ज्ञानी दर गए प्रवान श्री राग महला पहला कट था तू दरियाओ दन बीना मैं मछली कैसे अंतल हां जा जा देखा ता ता तू है तू ते निकसे फूट मरा ना जाना मैं ना जाना जाली जा दुख लागे ता पुत जे समानी रहो तू भरपूर जान्या मैं दूर जो काश करी सो तेरे हदूर तू देखे हो मुकर पाऊ तेरे काम ना तेरे नाए जेता दे तेता हो खाऊ ब्या दर की ना ही को दर मजाऊ नानक एक है कहे अरदास जियो पिंड सब तेरे पास आपे नेड़े आपे ही दूर आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मांझ मनो आपे बेखेल सुने आपे ही कुदर करे जहानो जो तिस भावे नानका हुक्म सोई परवानो से जाग महला पहला कर चौथा कीता कहा करे मन मान देवन हरे के हथ दान पावे दे ना देवी सोए कीते क्या कहिए क्या होए आपे सच पावे तिस सच अंधा कच्चा अगनाच कच न कच रहाओ जा के रुख विरख आराओ यही चाहते तिन नाओ फुल पाओ फल लिखिया पाए आ भी जप ही खाए कच्ची कंध कच्चा विच राज मत लूनी फिका साग नानके आने आवे रास बिन आवे नाही सवास श्री राग महला पहला का पन्नवा छल छलाई ना छले ना काओ कटारा कर सके ज्यो साहिब रखे तू रहे इस लोभी का जियो तल पले बिन तेल दीवा क्यों जले रहाओ पोथी पुराण कमाइए पौवस पौवटी ए तन पाइए सचबुद आण जलाइए ए तेल दीवायो जले कर चानन साहेब तो मिले रहाओ ए तन लागे वाणिया सुख हो सेव सेव कमाइए सब दुनिया आवन जानिया बिच दुनिया सेव कमाइए ता दर गए वसन पाइए और नानक बाह लड़ाइए एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री राग महला तीजा कर पहला हों सतगुरु से ही अपना एक मन एक चित पाए सतगुरु मन कामना तीरथ है जिसनों देव जाए मन चंडिया वर पावना जो इच्छे सो फल पाए नाओ चाहे नाओ मनिए मंगिए नामे सह समाए मन मेरे हर रास्त चाह सचिख जाए जिनी गुरमुख चाख्या सजे रहे समाए श्री राहो जनी सतगुर सेविया तनी पाया नाम लहान आंतर हर रस राव रहा तुका मान वाण हृदय कमल प्रगासया लागा सह ध्यान मन निर्मल हर राव रहा पाया दरगा मान सतगुर सेवन अपना ते बिरले संसार हमें ममता मार के हर रखया और तार हों तिनके बलहार में।

ग्रह ही माहे उदास सात संजम करनी सो करे गुरम सोए पर घास राव गुर के साधन मानत जीतिया गट मुक्त करे हम पाहे हर का नाम ते आइए सा संगत मेल मनाहे जे लख स्त्रियां भोग करे नाम खंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख न पावी फिर फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुरचानी च चलाए तिना पिछे रिद सिद्ध फिर उना तिल न तुम्हाए जो प्रभावे सो थिए और न करना जाए जन नानक जीवे नाम लै हर जीवो सहस वाला सवाए श्री राम महला तीजा कर पहला जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोय गुरमुख कार गुणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसके सत बसे सच्चे सच्ची सोए सच मिले से मन बिच से ना बिछड़े तिन निज कर वसा होए मेरे राम मैं हार विनिवन कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा होए राहो शब्द मिले सो मिल रहे जिसनो आपे लय मिलाए दूजे पाए को ना मिले फिर जाए सब मैं एक वातरा एक और है समाए जिस नौ आप दयाल होए सो गुरमुख नाम समाए पढ़ पढ़ पंडित ज्योति बाल करे विचार मत बुद्ध पवी ना बुझी अंतर लोग उदकार लख चौरासी भरम दे भरम प्रम प्रम होए खुआर पूर्व लिखा कमावना कोई न मिटनहार सतगुर की सेवा का खड़ी सिर दीजे आप गवाए छद बले ता हर मिले सेवा पल पवै सब थाए पारस पासया पारस होए ज्योति जो तुम समाए जिन को पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिले आए मन भुखा भुखा मत करे मत तू करे पुकार लख चौरासी जिन श्री सिर्फ सासे दे आधार निरपो सदा दयाल है सबना सबदा सार नानक गुरमुख बुद्धिए पाइए मुख द्वार श्री राम महला तीजा तीजा जिन्नी सुन के मनिया तिना निज कर वास गुरमती सलाहे सच पहर पाया गुणतास सावधर तेल से निर्मले हों सदबल हरे जास हृदय जिनके हर वसै चितकट है प्रगास मन रे हर हर ना हर हर निर्मल त्याय तुर मास्टर जिनको लिखिया से गुरमुख रहे लिवलाए राहो हार संतो देखो नजर कार निकट वसे पर हजूर ब गुरमत जिनी पछाणिया से देखा सदा हजू हदूर जिन गुण तिन सद मन वसे औगुणवंती दूर मन मुख गुण ते वाहरे बिन नामे मरले चूर जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन त्याया हर सो सोए आन दिन भगती रत्निया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग सुन का बिन सजाए दसो रोए जिस नगर अंदर नाम प्रकाश है वो सदा सदा थिर होए ए जन्म पदार्थ पाए कह हर नाम न चिते लिवलाए पाग खिसिया रहना नहीं आगे ठोर न पाए ओहो बेला हाथ न आवी अंत गया पछताए जिस नगर कहे सो उबरे हर सेती लिवलाए देखा देखी सब करे मन मुख बूझ न पाए जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है से पई हर दिन थाए हर गुण गावे हर नित पढ़े हर गुण गाए समाए नानक की बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक नाम मन का नाम ते आया गुरमती चार तिनके मुख सब उदले ते सच्चे दरबार ओए अमृत पीवे सदा सदा सच्चे नाम प्यार पाई रे गुरम सदा पत होए हार हार सदा ते आइए मल हमें कढे तोए राहो मान मुख नाम ना जान नी बिन नामे पत जाए शब्द साधना आए वो लागे दूजे पाए दस्तां के कीड़े पवे विच विस्तां से विस्तां माहे समाए जिनका जन्म सफल है जो चले सतगुर पाए कौल कुल आधारे अपना तन बिने जी माए हर हर नाम ते आइए जिसको जिसनो कृपा करे रजाए जिन्नी गुरमुख नाम ते आया बिचों आप गवाए ओए अंदरों बाहरों निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमुखी हर ते आए श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन

कटण हार बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्तार सहज सिद्धि रत्या अवजल उतरे पार तीर्थ वत लख संजमा पाइए साधु तूर लूक मावे किसे जा विखे सदा हदूर सांत अनंत रवरिया पर मेरा भरपूर सच पातशाही अमृत सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरतारिये सच सिरजियो जहान नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुरबान गिरि राग महला पंचमा उद्यम कर हर जापना वडभागी तनखाट संत संग हर सिमरना मिल जन्म जन्म की मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पूंज तू सब चुके सुख संताप रहाओ जिस कारण तन तालिया सो प्रभु डिठा नाल जल तल महियल पूरिया प्रभु अपनी नजर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन की कीत रतन जवीर माणका मत हर का नाओ सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ श्री राग महला पंजमा सोई शस्त्र सौन सोई जित जपिए हर नाओ चरण कमल गुर तन दिया मिलन थावे थाओ साची पूंजी सत्संग अठ पैर गुण गाओ कर कृपा प्रोपेटिया मर न आवन जाओ मेरे मन हर पज सदा एक रंग कट कट अंतर रवरिया सदा सहाई संग रहाओ सुखा की मित क्या गणी जे सिमरी गोविंद जिन चाख्या से तृप्तास्या ओ रस जाने जिंद संता संगत मन वसे प्रभु प्रीतम बखिंद जिन सेविया प्रभु अपना सोई राज नरेंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन स्नान रसना सुरे गुणवती कोई न पूजे दान दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुरबान मिलिया कदे न विछड़े जो मिलिया करतार दासां के बन कटिया साजे सिरजन हार उला मार्ग पायन गुण अवगुण न विचार नानक तिस नान कीजे सगल कटाधार श्री राग महला पंजमा रसना सत्या सिमरिए मन तन निर्मल होए मात पिता साग अगले किसवी ने वर न कोए मेर करे जे अपनी चसन विसरे सोए मन मेरे साचा से विचर सास इन सच्चे सब कूड़े अंत होए विनाश रहाओ साहेब मेरा निर्मला तिसविन रह न जाए मेरे मन तन पूख अगली कोई आण मिलावे माए चारे कुंडा पालिया सभी ने वरन जाए तुसा गिरदास कर जो मिले करतार सतगुर दाता नाम का पूरा जिस पंडार सदा सदा सलाहिए अंत न पारा वार पर्वतगार सलाहिए जिसते चलत नीक सदा सदा राधिये हा मत विशेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजमा संत जनो मिल पायो सच्चा नाम समाल तोसा बंदो जी की इथे उथे नाल गुरपुरे ते पाइए अपनी नदर निहाल करम प्राप्त तिस होवे जिसनु होए दयाल मेरे मन गुरु जेवड़े अवर न कोए दूजा थाओ ना को सुजे गुर मेले सच सोए रहो सगल पदार्थ ते सुमले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा से वडभागी माए गुरदाता समर्थ गुर गुर सब मेरिया समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए चित मुख गुर सलाइए करण कर्ण समर्थ से मथे निचल रहे जिन गुर तारिया हथ गुर सतगुरु नाम पिया लिया जन्म मन का पंथ गुर परमेश्वर सेविया।

बहुत बहुत देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग। गौण करे चह कुंटका घड़ी न बैसण सोए, चित आवै उस पार धर्म मन तन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वश किया कृपन लो प्यार, चारे किल विख उन अघ किए। हुआ असुर संहार पोथी गीत कवित किछ कदे न करन धरिया। चित आवै ओस पार ब्रह्म तन निमख सिमरत तरिया। सास सिमरित वेद चार मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया तीरथ गवन करे। खट कर माते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया रस भोगण विस्थार, बाग सुहावे सोहने चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहुविधि चाय लग रहिया, चित न आयो पार ब्रह्मता सर्प की जून गया। बहुत तनाड अचारवंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग प्रीत। लश्कर तर्कस बंद बंद जियो जियो सगली कीत, चेतना आयो पार ब्रह्मता खड़ रिसातल दीत। काया रोग ना छिद्र किछ ना किछ काड़ा सोग, मित ना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग। सब किछ की तोन आपना जिय ना संक धरिया, चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग, ज्यो ज्यो ओह।

मीरा जियो चिम चिम अमृत वरसदा बोलाया बोली खासम दा बहुमान किया तुद उपरे तू आपे पाहे थाए जियो तेरिया भगता भुख सद तेरिया हर लोचा पूरन मेरिया देहो दर्स सुख दात्या मैं गल विच लहो मिलाए जियो तुद जेवड़ अवरना पालिया तू दीप लो पयाल पयालिया।

बद्धा चुट्टे हे जित, हर का नाम ना चेते प्राणी, विकल पया संग माया, धन स्यो रत्ता जो मन मत्ता, अहिला जन्म गवाया, धर्म सेती वापार ना कीतो, कर्म ना कीतो मित, कहो नानक तीजे पहरे प्राणी, धन जोबन स्यो चित, चौथे पहरे रैन के वन जा रिया मित्रा, लावी आया खेत, जा जम पकड़ चलाया वन जा रिया मित्रा, किसे ना मिलिया पेत, पेत चेत हर किसे ना मिलियो, जा जम पकड़ चलाया, झूठा रुदन हुआ दुआ ले, खिन मह पया पराया, साई वस्त प्राप्त हुई जिस्यो लाया हेत, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुणिया खेत, श्री राग महला पहला, पहले पहरे रहन के वन जा रिया मित्रा, बालक बुद्ध अचेत, खीर पिए खेला ये वन जा रिया मित्रा, मात पिता सुत हेत, मात पिता सुत निहो कनेरा, माया मोह सबाई, संजोगी आया कित कमाया, करणी कार कराई, राम नाम बिन मुक्त न होई, बूढ़ी दूजे हेत, कहो नानक प्राणी पहले पहरे छुटेगा हर चेत, दूजे पहरे रहन के वन जा रिया मित्रा, पर जो बन मैं मत एहनस काम व्यापिया, वन जा रिया मित्रा, अंधले नाम ना चित, राम नाम घट अंतर नाही होर, जाने रस कस मीठे, ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही, जन्म मरहोगे झूठे, तीरथ वर्त सुख संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुबिधा व्यापै दूजा, तीजे पहरे रहन के वन जा रिया मित्रा, सर हंस उलखड़े आए, जोबन कटै जरुआ जिने, बन जा रिया मित्रा, आव कटै दिन जाए, अंत काल पछुतासी, अंधुले जा जम पकड़ चलाया, सब किछ अपना कर कर राख्या, खिन मह पया पराया, बुद्ध विसर्जी गई सियाणप, कर अवगण पछुताए, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभु चेत हो लेवलाए, चौथे पहरे रहन के वन जा रिया मित्रा, बिरध पया तन खीण, अखी अंध ना दिस रही, अखी अंध ना दिस रही, वन जा रिया मित्रा, कन्नी सुने न वैन, अखी अंध जीव रस नाही, रहे परा को ताना, गुण अंतर नहीं चिके उस्यो, सुख पावे मन मुखिया बन जाना, खड़ खड़ पकी कुड़ भजे, बिन से आए चले क्या मान, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण, ओढ़ के आया तिन साहिया वन जा रिया मित्रा, जर जरवाना कन, इस रती गुण ना सम्मानिया, वन जा रिया मित्रा, अवगण खड़ सन बन, गुण संजम जावे चोट ना खावे, ना तिस जमन मरना, काल जाल जम जोहे ना साके, पाए भगत पै तरना, पत सेती जावे सहज समावे, सगले दुख मिटावे, कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटे, साचे ते पत पा।

पाओ दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिए बन जा रहा मित्राले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सिती मन जाने खट सवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़े दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन लिवलाए कहो नानक दूजे पहरे प्राणी तिस काल ना कब हूं खाए तीजे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा मन लगा आल जंजाल मन लगा आल जंजाल धन चितवे धन संचवे बन जा रहा मित्रा हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाल जे होवे अंत सखाई एहो धन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछुताई जिसनों कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम

खिन खिन ढिल मूल ना करो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद ना जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफल्यो रहन भगता दी श्री राग महला पंजवा पहले पहरे रहन कै वन जारिया मित्रा धर पायता उदरै माहे दस दासी मानस किया वन जारिया मित्रा कर मोहलत कर्म कमाहे मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे जैसा लिख तुर पाया मात पिता भाई सुत बनता तिन पीतर प्रभु संजोया कर्म सुकर्म कराए आपे इस जनते वस किच नाहे कहो नानक प्राणी पहले पहरे धर पायता उदरे माहे दूजे पहरे रहन के वन जारिया मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पछाणई बन जा रहा मित्रा मन मता अहमे बुरा भला ना पछाणे प्राणी आगे पंथ करारा पूरा सतगुर कभू ना सेविया सिर ठाडे जम जंदारा धर्म राय जब परकस बवरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जोवन लहरी दे तीजे पहरे रहन के वन जा रहा मित्रा बिख संचे अंध ज्ञान पुत्र कलत्र मोहे लपटिया वन जा रहा मित्रा अंतर लहर लोभान परानी सो प्रभ चित न आवे सात संगत के स्यो संग न किया बहुजोनी दुख पावे सृजनहार विसारिया स्वामी एक निमख न लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजे पहरे बिख संचे अंध ज्ञान चौथे पहरे रहन के वन जा रहा मित्रा दिन नेड़े आया सोए गुरमुख नाम समाल तू वन जा रहा मित्रा तेरा दरग है बेली होए गुरमुख नाम समाल प्राणी अंते होए सखाई एहो मोह माया तेरे संग ना चाले झूठी प्रीत लगाई सगली रहन गुदरी अंधियारी सेव सतगुर चानन होए नानक कहो नानक प्राणी चौथे पहरे दिन नेड़े आया सोए लिखिया आया गोविंद का बन जा रहा मित्रा उस चले कमाणा साथ एक रत्ती बिलम ना देवनी बन जा रहा मित्रा ओनी तकड़े पाए हाथ लिखिया आया पकड़ चलाया मन मुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेव्या से दरगह सदा सोहेले कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवे सो खात कहो नानक भगत सोहे दर वारे मन मुख सदा

भोदान में दाजो हर राम राम मेरे बाबुला पेर मिल तन वेल बधंदी हर जुग हो हर जुग है जुगो जुग जुग है जुगो सद पीढ़ी गुर चल गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिनी गुरमुख नाम से आया हर पुरख ना कभी बिन सह जावे नित देवे चढ़े सवाया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सुहंदी हर राम नाम मेरे बाबुला तेर मिल धन वेल वधंदी श्री राम महला पांचवा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरे नाले संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई ना जाए मन चिंदे सही फल पावे चरण कमल चित लाए जल थल पूर रहिया बनवारी घट घट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा बिख सागर संसारे चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख नाम व्यापै गुर पूरा पेटै वडभागी आठ पहर प्रभ जापै आद जुगादि सेवक स्वामी भगता नाम धारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेत सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर नह चल मली हर दर सेवे अलख पेवे निहचल आसन पाया तह जन्म न मरण न आवण जाना संसा दुख मिटाया चित्रगुप्त का कागद फारिया जम दूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संता संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख है गामी इच सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले चिरी विछुनिया अंतर बाहर सरबत रव्या मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मिल जीवे मीना हर पिया घाने अमृत बाने सब सुखा मन गुठे श्री धर पाए मंगल गाए इस पुन्नी सतगुरु तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाओ सरबस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के संत महला पांचवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना हठ मजाहू मैं फिरी पसे क्यों दीदार संत सरनाई लभने नानक प्राण अधार चंत चरण कमल त्यो प्रीत रीत संतन मन आवै जियो दुतिया पाओ विपरीत अनीत दासा नह पावै जियो दासा नह पावै बिन दरसावै एक खिन धीरज क्यों करे नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यो मरे मिल मेरे प्यारे प्राण अधारे गुण साथ संग मिल गावे नानक के स्वामी तार अनुग्रह मन तन अंक समावे दखना सुहंदड़ो हट हब ठाए कोई ना दिसै दूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेटते चंत तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी विचारिय जियो सिमरत सास गिरास पूर्ण विश्वास क्यों मनो बिसारी है जियो क्यों मनो बेसारिया निमख नहीं तारी है क्यों मनो बेसारी है निमख नहीं तारी है गुणवंत प्राण हमारे मन बांचत फल देत है स्वामी जियो की बिरथा सारे अनाथ्य नाथे सरब कै साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साध खे साई थिये कृपाल लदे हब्बे थोकड़े नानक हर धन माल शांत सुंदर स्वामी धाम भगत है विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तने गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो
अमृत हर पीते सदा स्थिर जीवते बिखै बन फीका जानिया कहे किरपाल गोपाल प्रभ मेरे साथ संगत निध मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर रतन मन अंतर जीवते इक तिल नहीं विसरे प्राण आधारा जप जप नानक जीवते दखना जो तो कीने अपने तिना कु मिलियो हो आपे ही आप मोहेस जस नानक आप सुनियो शांत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोहिया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहिया जियो हर कंठ लग सोहिया दोख सब जोहिया भगत लखन कर वस पय ना मन सर्ब सुखे बुठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इस पुजाया बहुड़ ना माया होया कर गह लीने नानक प्रभ प्यारे संसार सागर नहीं पोहया दखना साई नाम अमोल कीना कोई जान दो जिन्ना भाग मथा हे से नानक हर रंग मान दो शांत कहते पवित्र सुनते सब तन लिखन लिखंती कुल तारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिनी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूरन कृपा प्रभ करी कर गह लीने हर जसो दीने जोन ना तावे नहमरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन न जाय अकथ स्वामी सदकै जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोई जियो हर जिय सबे प्रतिपाल दा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई तिस बिन अवर ना कोई जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए नान जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिन अवर ना कोई हर गुण हर गुर सरनाई पाईए मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना बिन पाईया हर किने ना पाया नाओ बिच हों मैं कर्म कमाव दे जो वेसुआ पुत निनाओ पिता जात ता सो होइए गुर तुठा करे पसाओ वड भागी गुर पाया हर अहनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ जब लग जोबन सास है तब लग नाम ते आए चल दिया नाल ना चल सी हर अंत ले चढ़ाए हो बलिहारी तिन को जिन हर मन उठा आए जिनी हर हर नाम ना चेत्यो से अंत गए पछुताए तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए मन हर हर प्रीत लगाए वड भागी गुर पाया गुर सबी पार लगाए रहाओ हर आपे आप उपायदा हर आपे देवे ले पाया गुर सब लेवे दे हर आपे परम भुलाएदा हर आपे ही मत दे गुरमुख मन परगास है से विरले के हो बलिहारी तिन को जिन हर पाया गुरमते जन नानक कमल परगासिया मन हर हर बुठड़ा हे हर मन हर हर जपन करे हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू सब तिल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाइए कित पत गुर पूरा भेटिया गुर पूरा सतगुर भेटी है हर आए बसै मन चित मैं कर नाम आधार है हर नामे ते गत मित मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत जन नानक नाम ते आया हर रतड़ा हर रंग रत हर त्यावो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रत सब ते उत्पत रहाओ जिन को पूरब लिखिया से आए मिले गुर पास
सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम पुरगास धन धन बन जबा पारिया जिन वखर लदेड़ा हर रास गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास जन नानक गुर तिन पाया जिन्ना आप तथा गुण तास हर त्या वो सास विरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग तिवार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा रागा विच श्री राग है जे सच धरे प्यार सदा हर सच मन वसै नहीं तिल माते अपार रतन अमोलक पाया गुर का सद विचार जेहवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्रीर अकार नानक सच्चा सतगुर सेवी है सदा सच वापार महला तीजा होर बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत ना होए एहो मन माया मोहिया वेखण सुनन ना होए वेखण सुनन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा दी बाण हर हर एक सहदा है अमर एको हर एक चित कर हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पाओ दूर कर हर तिसे नो सालाहे जे तुद रखे बाहर कर हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पाओ बिखम तार श्लोक महला पहला दाती साहिब संधिया क्या चले तिस नाल इक जागम दे नाल हन इतना सुत्या दे उठाल महला पहला सिद्ध सबूरी सादिक सबर तोता मलायका दीदार पूरे पाए साप ठाओ नाही खाए का पौड़ी सब आपे तो दो पाए कह आप का रह लाई तू आपे वेख विघता अपनी वड्याई हर तुधो बाहर किछ नाही तू सच्चा साई तू आपे आप वर्तदा सबनी ही ठाई हर सिसे त्यावो संत जनो जो ले छिड़ाई श्लोक महला पहला फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका छाओ आप हो जे को भला कहाए नानक सा पर जापै जा पत लिखे पाए महला दूजा जिस प्यारे स्यो निहोते से आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना पौड़ी तो दे आपे धरती साजिया चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तो दसाजिया वापार करीवे इक ना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जमकाल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे ओए आप छुटे परवार स्यो तिन पिछे सब जगत छुटीवे श्लोक महला पहला कुदरत करके वस्या सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कहीं ना जाए सरे सरियत करे विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिद्क कर सिजदा मन कर मकसूद जिह तिर देखा तेह सिर मौजूद महला तीजा गुर सभा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रह हदूर पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा नम खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वर्तदा हर सबना पाणा तो सब तुझे त्यावे जी जंत हर सार पाणा जो गुरमुख हर आराध दे तिन हौ कुरबाणा तू आपे आप वर्तदा कर चोज बिजाणा श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाइये हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कह रंग रह कभू ना तू तसने हो कलो मसाजनी जायसी लिखा पी ना ले जाए नानक सह प्रीत ना जायसी जो तुर छोड़ी सच्चे पाए महला तीजा नदरी आवदा नाल ना चले वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दृढ़ाया सच रहो लिवलाए नानक सब दी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी हर अंदर बाहर एक तू जाने भेत जो की चै सो हर जानदा मेरे मन हर चेत जो डरे जे पाप कमाव दा धर्मी विगसेत तू सच्चा आपने आओ सच ता डरिए केत जिन्ना नानक सच पछाणिया
से सच रिलेट श्लोक महला तीजा। कलम जलो सन मसवाणिया कागद पी जल जाओ, लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ। नानक पूरब लिखिया कमावना अवरना करना जाए, महला तीजा होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार। नानक बिन नावे को थिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर। पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है, हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है। जा न्याओ है धर्म का, हर की वड्याई वड्डी है। जा फल है जीव का, हर की वड्याई वड्डी है। जा ना सुनई कहिया चुगल का, हर की वड्याई वड्डी है। अपुछया दान देव का श्लोक महला तीजा। हाव हाव करती सब मुई संपो किसे नाल, दूजे पाए दुख पाया सब जो ही जमकाल। नानक गुरमुख उबरे साचा नाम समाल, महला पहला गली असी चंगिया आचारी बुरिया। हा मनो कुसुधा कालिया।

हर जियो हित प्यार पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे थाई जिस हर पावे पावे तस गुर मिले सो हर नाम ते आए गुर शब्दी हर पाईए हर पार लंघाए मन है मन हट किने न पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लय हर लाए श्लोक महला तीजा नानक सो पूरा नानक सो सूरा वरियाम जिन विच दुष्ट अहंकार मारिया गुरमुख नाम चलाए जन सवारिया आप सू हुआ सदा मुक्त सब कुल जिन आप हुआ सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया सोहन सच द्वार नाम प्यारिया मन मुख मरे अहंकार मन वगा मरन वगाड़िया सबो वरते हुक्म क्या करे विचारिया आपो दूजे लग खसम विसारिया नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया महला तीजा गुर पूरे हर नाम दरड़ाया तिन विचों परम चकाया।

मन मेरे सपना ऊपर हुक्म चलाए, सहसो ऐसा हर नाम जपिए, मन मेरे सो अंति अवसर लाए छड़ाए, सो ऐसा हर नाम जपिए, मन मेरे जो मन की तृष्णा सा भुख गवाए, सो गुरमुख नाम जपया वड पांगी तन नंदक दुस सब पैरी पाए, नानक नाम राध सपना ते वड्डा सपनावे, अगे आन मनवाए, सलोक महला तीजा देश करे को रूप।

ले जियो माज महला चौथा मधुसूदन मेरे मन तन प्रणा हार हाँ हर बन दूजा व न जाना कोई सज्जन संत मिले बड़ पागी मैं हर हर प्रभु प्यारा दसे जियो हाँ मन तन खोजी पाल पलाई क्यों प्यारा प्रीत मिले मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई वच संगत हर प्रवसे जियो बसे जियो मेरा प्यारा प्रीतम सत रखवाला सत रखवाला हम बारक दीन करो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सत गुर पूरा गुर जल मिल कमल वगै वै

तू गंठी मेर सिर तू ही है। आद मद अंत पर सोई अवर न आद मद अंतर पर सोई अवर न कोई। दिखा लिया जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता। तू निर्बाण रसिए रंग पा रसिया रंग राता। अपने कर्तव आते जाने आपे सब संभाले जियो। तू ठाकर सेवक सुने आपे तू गुप्त प्रगट प्रभाते। नानक दास दा गुण गा दे एक पूरी नदर निहालिए जियो। माज महला पंजमा सबस बाणी जित नाम खानी। गुर प्रसादी किन्ने गर ले जानी। धन सुवेला जित हर गावत सुनना आए ते परवाना जियो। से नेत्र परवान जिनी दर्शन देखा। से कर पले जिन हर जस देखा। देखा से चरण सुहागे जो हर मार्ग चले। हाँ बल तिन संग पछाना जियो। सुन सा जन मेरे मीत प्यारे सा संखन माय उदारे। किलव काट हुआ मन निर्मल मिट गए आमन जाना जियो। वे कर जोड़ एक दिनों करीजे कर कृपा डुबदा पत्थर लीजे। नानक को पर पै कृपाला प्रव नानक मन पाना जियो। माज महला पंजमा अमृत बानी हर हर तेरी। सुन सुन होवे परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का सतगुर का दर्शन पाए जियो। सुख पया दुख दूर पराना।

सागर स्वामी देत सगल हारे जियो, जल थल पूरया निर्वाना, सद बल हार जाइए करवाना, रैन दिन तिसदा त्याई जे, खन में सगल उदारे जियो, राख लिए सगल प्रवया पे, उतर गए सब सुख सुनता पे, नाम जपत मन हर हरियावल, पर नानक दर निहारे जियो, माज महला पंज

रोग सब नवारे, नानक दास किए प्रभु अपने, हर कीर्तन रस रंग माने जियो। माज महला पंजमा, कीनी दया गोपाल गुसाई, गुर के चरण वसे मन माही। अंगीकार किया तन करते, दुख ना का डेरा टाया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा थाल दिसे कोई। दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, इको सामे आया जियो। जो कुछ करे सो आपे आपे, बद सियान कुछ न जाते। अपने संतान आप सहाई, परम पलाया लाया जियो। परम पलावा लाया जियो, चरण कमल जा का जन का दारू। आठ पैर हर नाम पारू, सहज आनंद गावे गुण गुणेंद। प्रभु नानक सरस माया जियो। माज महला पंजमा, सो सच मंदर जत सच त्याये। सूरदास हिला जित हर गुण गाये, सात आरती सुहावी जित वसे। हर जन सच्चे ना बिटो गरवानो जियो। सच बड़ाई की न पाई, कुदत कर्म न कह न जाई।

हर कीर्तन गावो डहराती सफलिया हे कारी जियो दृष्टतार अपना दास सवारिया कड़कड़ अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया इस रन हर दूजा नाही बाबा नानके मत सारी जियो माज महला पंजमा।

पकड़ा गुर के शब्द मने मन मिलाए सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए शब्द निरत करावने ऊंचा कुके तन है पछाणे माया मोह जो है जम काले माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने गुरु भगत ना जा आप कराए तन मन दाता सह सवाए बाणी बुझे शब्द बजाए गुरु भगत थाए पावने बहु ताल पूरे बाजे बजाए ना को सुने ना मन बसाए माया कारण पड़ बंद फिर बंद नच दूजे पाए दुख पावने जिसे अंतर प्रीत लगे सुमुका इंद्री बस सच संयोज सा गुरकै शब्द दा हर त्याए यह भगत हर पावने गुरु भगत जुग जाचारे होई होत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुरु भगती पाइए गुचानी चलावने माल हुंदा तीजा सच्चा सेवी सच सलाही सच्चे नाए दुख कबही नाही सुखदाता सेवन सुख पायन गुरु मत मन बसावने हो वारी जीव वारी गुरु मख वारी सुख सह समाद लगावने हो जो होर सेवे सो से सदा सोए शोभा सुरत सामने रहो शुभ को तेरा भगत कहाए सही भगत मन पाए सच बाणी तो सलाहे सलाह रंग ते भगत करावने सब को सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता तू किसेरा जा तू भगत नाए रचावै तू आपे नाओ जपावने गुरमति हर मन बसाया हर शुभ सब मोह गवाया एक स्यों निवलागी सद ही हर नाम दिखावने भगत रंग रात सदा तेरे जाए नौ निध नाम वसया मन आए पूरे भगत सत गुर पाया सबदे निर्मला बने तू दयाल सदा सुखदाता तू आपे मिले सुख गुरमुख जाता तू आपे देवे नाम बढ़ाई नाम रते सुख पावने सदा सदा सच गुण तो सुध सलाही गुरु जाता दुध गुनाही एक क्यों मन रहा समाए मन मनिया मने मिलावण्या गुरु सोवे सो सलाहे सच ठाकुर जे परवाहे नानक नाम बसे मने अंतरगु तू सबदी हर मिलावण्या माज मिला तीजा तेरे भगत सोहे सच दरबारे गुरु कै शब्द नाम सुवारे सदा आनंद रह जिंदा सी गुर गुण कह गुणी समावण्या हो वारी जियो बारी नाम सुन मन वसाण बनया हर जियो सच्चा उचो उचा होमें मार मिलावने रहो हर जियो साचा साची नाही गुर प्रसादी किसे मिलाई गुर शब्द मिले से बिछड़े नाही सच सहज सच समावने तू ते बाहर कछु ना कश कछु ना होए तू कार कर लिखे जाने सोए आपे करे कराए कता गुरमत आप मिलावने सावन गुणवंती हर पाए पै पाए सिंगार बनाए सतु सेव सदा सुहागन सच उपदेश समावने शब्द विसारन तना थौर न पौथाओ पार ब्रह्म पूजे ज्यो संजय करताओ हलत पलत चनी दो मैं गवाए दुख दुख भावनिया लिख दिया कागज मस थोई दूजे पाए सुख पाए ना कोई कुरल फैसे गुर कमावे जल जावै कूर च तलावने गुरमुख सचो सच लिख विचार से जन सच पावे मुख द्वार सच कागज कलम सवाणी सच लिख सच समावने मेरा प्रबंध लिखा वेखे गुर प्रसादी मिले सोई जन देखे नानक नाम मिले वड्याई गुर पूरे गुरते पावने माज मिला तीजा आत्म राम परदास गुते होवे हमे मैल लगी गुर शब्दी होवे मन निर्मल अंजन भक्ति रखा भगत करे हर पावने हो वारी जीव बारी आ भगत करन अवरा भगत करावन इना भगत जना को सद नमस्कार कीजे जो अंगन हर गुण गावने रहो आपे करता कारण कर कराए जित भावे तत्कारे लाए पूरे भगत गुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुख पावने मार मार जीवे सा किछ ना किछ पाए गुर पर सादी हर मन बसाए सदा मुकत हर मन बसाए सज फल समावने बहु कर्म कमावे मुक्त ना पाए जे संतर पवे दूजे पाए पाए मिथा जन गुआवने कपटी बिन शब्द दुख पावने तावत राखे ठाक रहाए गुर प्रसादी वर मुकद पाए सतगुरु आपे मेल मिलाए मिल प्रीतम सुख पावने एक कूड लागै कूड़े फल पाए दूजे पाए मिथा जन गुआए आप डूबे सगले कुल डूबे कुछ कूड़ बोल विखावने इस तन
मैं मन को गुरु देख।

मन बिछड़िया हर मेलिए नानक सुहाऊं। सर्व कल्याणा तेत देना हर परसी गुर के पाऊं। बार माज की तथा श्लोक महला पहला। मालिक मरीद तथा चंदहड़ा सोइए की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। श्लोक महला पहला। गौरदाता गौर हिवे कर गौर दीपक तहलोए अमर पदार्थ नानका मन मानिया सुख होए। महला पहला। पहले

सातवें संग किया कर वास, आठवें क्रोध हुआ तन नाश। नावे तौले उबे सा, दसवें सदा हुआ सुआ। गए संगीत पकारी ता, उड्या हंस दसाए रा।

दस बाल तन बीस रावण तीसा का सुंदर कहावै चाली सी पर होए पचासी पग खिस्से सठी को बुढ़ापा आवे सत्तर का मतहीन सिया का व्यवहार न पावे नवे का से जासनी मूल न जाने आप बल टंडो लम ढूंढ मंडिठा मैं नानक जग तूए का तावल हार पौड़ी तू करता पुरख गम है आप सरिष्ठ पाती रंग परंग पारजना बो बो बिद पाती तू जाने जिन पाई है सब खेल खेल तुमाती एक आवे एक जाए उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख बधाती तू आपे आप सुजान है।

दिल अच्छे मुख ले आवर द्वाजे दुनिया के झूठे अमल करे महला पहला जाओ नहीं ता क्या आखा क्या नहीं क्या अवर क्या होवा किता कारण कहा कथना भरिया भर भर धोवा आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा किता कारण कहया कथना भरिया।

पौड़ी महारुति सब तू कड़ी मूर्त विचारा तू गाते किन्ने न पायो सच्चे अलख पारा पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ हंकारा नाओ पढ़िए ना बुझिए गुरमति विचारा गुरमति नाम तन खटिया भगती परे भंडारा निर्मल नाम मनिया दर सच्चे सचियारा जिसदा जियो प्राण है अंतर ज्योत पारा सच्चा सा एक तू होर जगत बनजारा सलोक महला पहला मेर मसीत सिद्क मसुला हक हलाल कराण सरम संत सिल रोजा होआ मुसलमान करनी काबा सच पीर कलमा करम रवाज तस भी सा तस भाग सी नानक रखे लाज महला पहला हक पराया नानका उस सोवर उस गाये गौर पीर हम आता परे जा मुड़दार न खाए गली पिस पिस्त न जाइए छुट्टे सच कमाए मारना पाहे हराम होए हराम माए होए हिलाल न जाए नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज नवाजा बख्त पंज पंजा पंजा पंजे नाओ पहला सच हलाल दुआ तीजा खैर खुदाए चौथी नियत रास मन पंजवी सिफत सुनाए करने कलमा आख कै ता मुसलमान सदाए नानक जेते कूड़ियां कूड़े कूड़ी पाए पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दे एक कच्चे दे व्यापारा सतगुर तुठे पईन अंदर रतन भंडारा बैन गुर किने न लद्या अंधे भौंक मुए कुड़ियारा मन मुख दूजे पच मुए ना बिचों विचारा इस सुबाजों दूजा को नहीं किस अगे करे पुकारा एक निरतन सदा भोंग दे इकना परे पुजारा बिन नावे होर तन नाहीं होर दिखिया सब चारा नानक आप कराए करे आप हुक्म सवार नहारा श्लोक महला पहला मुसलमान कहावन मुस्कल जा होए तो मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना मल मसावे होए मुस्लिम दीन महाने मरण जीवन का परम चुकावे रब के जाए मन्ने सर ऊपर करता मन्ने आप गवावे तो नानक सर्व जिया महरैमत होए तो मुसलमान कहावे महला चौथा।

अंजन महन रंजन पावे तज मान अभिमान प्रीत सतदारा तज प्यास आस राम लिव लावे नानक सच्चा मन वसे सत शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे राजे सिकदार कोई न रहसियो हट पटन बजार हुक्मी टैसियो पक्के वंत द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब परे भंडार रीते इक खने ताजे रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलत कर बार किसे से अपने तंबू पलंगन वार सरैचे लालती नानक सच दार सनाकत कुदरती श्लोक महला पहला नदियां होवन तेणवा सुम होवे ददकियो सगली तरती सकर होवे खुशी करे नत जियो पार्वत सोना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाऊ की तू है सलाना आखन लै न जाऊ महला पहला।

कल्ले बुरी संसार बांधे खपिए, बिन नावे बेकार पाने पचिए। रात हो गए एक जाने सोई सजती, कुफर गुह कुफराने पया दस जी। सब दुनिया सुबहान।

गौड़ी महला पांचवा नित व्रत नावण हर नित व्रत नावण राम सार की जय चोल महारास हार अमृत पीज रहाऊ निर्मल उदक गोविंद का नाम मजन करत पूर्ण सब काम संत संग तह गोष्ठ करत कोट जन्म के गोष्ठ होए कोट जन्म के गिल विख खोए सिमर है साध कर आनंद मन तन रवे परमानंद जिस है प्राप्त हर चरण निधान नानक दास सदा गति से गुरबान गौड़ी महला पंजवा सो किस कारजत मैल न लागे हर कीर्तन में ए मन जागे रहाओ एको सिमरन दूजा भाओ संत संग जप केवल नाओ जा धर्म अर्थ काम व्रत पूजा पा ब्रह्म बहन जानना दूजा ताकि पूर्ण हो काल जा की प्रीत अपने प्रभ नाल सो वैष्णो है जे उप अपरपार पौ नानक जिन तजे विकार पैर गौड़ी महला पंजवा जीव त जाहे जाहे दवाने जीवत छाड़ जाहे दवाने मोया उनते गोबर साने सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया काहू काज ना आवत बिख्या राहु बिखैठ गौरी जिन जन खाई तां कि तिस न कबहु ना जाई दर्द दुख दुतर संसार राम नाम बिन कैसे उतर सपार साध संग मिल दोए कौल साध राम नाम नानक आराध गौड़ी महला पंजवा गरीबां पुर जखिन जय दाड़ी पाव ब्रह्म सागर में साड़ी पू साड़ी पूरा न्याओ करे करदार अपने दास को रखन हार हाउ आज गाद प्रगट प्रताप नंदक मुआस उपज वाप तेन मारिया जी रख न कोई आगे पछ मंदी सोई अपने दास रखे कंठ लाई सरण नानक हर नाम ते आई पैरों गौड़ी महला पंजवा माझ हर झूठा की तो नया पापी कौ लागा प्रताप संताप जिसे सहाई गोविंद मेरा तिस कौ जम नहीं आवे निराराऊ साची दरगा बोले कूड़ सिर हाथ बिछोड़ अंधा मूड़ रोग ब्यापे कर दे पाप अदली हुई बैठा प्रभ आप अपने कमाया आपे बात दे दरबस गया सब जी कै साथे नानक शरण परे दरबार राखी पैज मेरे करतार गौड़ी महला पंजवा जनकी तूर मन मीठ खटाना खटानी गुरु लिखिया पूर्व कर्म लिखिया दुरबरानी रहाउ मां अहं बुद्ध मन पूर्थताई साध तूर कार सुध न मंजाई अनक जला जे तो वह दे मैल न उतरै सुध न केते ही सतगुर भेट्यो सदा कृपाल हर हर सिमर काटिया पौकाल मुकत जोगत भुगत जोगत हर नाउ प्रेम भगत नानक गुण गाऊ पगौड़ी महला पंजवा जीवत पदवी जीवन पदवी हर के दास जिन मिलया आत्म प्रगास हर का ना हर का सिमर सुनमन कानी सुख पावे हर द्वार प्राणी राउ आठ पैर ते आईया गोपाल नानक दर्शन देख निहाल गौड़ी महला पंजवा शांत पही गुर गोविंद पाई ताप पा बिनसे मेरे पाई रहाऊ राम नाम ने तरसन बखाण बिनसे रोग पही कल्याण पार ब्रह्म गुण अगम विचार साधु संगत है निस्तार निर्मल गुण गावो नित नीत गई ब्याद उबरे जन मीत मन विच क्रम प्रभ आप न त्याई आठ नानक दास तेरी सरनाई गौड़ी महला पंजवा नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव परम गए पूर्ण पई सेव रहा शीतला ते रखिया बिहारी पावरम प्रभ कृपा तारी नानक नाम जपै सो जीवै साध संग हर अमृत पीवै गौड़ी महला पंजवा धन ओह मस्तक धन तेरे नेत धन ओ भगत जिन तुम संग हेत नाम बिना जैसे कैसे सुख रही है कैसे सुख लही है रसना राम नाम जस कही रहा ओ तैन उपर जाइए कुरबान नानक जिन जपया निर्बाण गौड़ी महला पंजवा तू है मसला तू है नाल तू है राख है सार संभाल ऐसा राम दीन दुनी सहाई दास की पैज रखे मेरे पाई रहा आगे आप ये थान वस जै कै आठ पैर मन हर कौ जापे पत प्रवान सच निशान जा कौ आप करे फुरमान आपे दाता आप प्रतपाल नित नित नानक राम नाम संभाल गौड़ी महला पंजवा सतगुरु।

माया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्थिर सुहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाई हेठ, करत बलांगू बालाहे बांगू लाहे पेट। बिन करतूती मुक्त न पाईए, मुक्त पदार्थ नाम ते आइए रहाओ। पूजा तिलक करते शनाना, श्री काट देव हर दाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी, जिया को उतना संग प्राणी। कहो नानक जिस कृपा धारे, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचारे। गौड़ी महला पंजवा, थिर कर वैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काश सुवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह आशा सबस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपा हो भगवान साध संगत मिल, कीनो दान शरण परे प्रभ। अंतर जामी नान कोट बकरी ब्रह स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाए न जले, हर संग राते माया नहीं चले। हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सो फल फल। सब पै मिटे तुम्हारे नाई, पेट संग रा हर हर गुण गाई रहाऊ। हर संग राते मिटे सब चिंता, हर सिंह सो रचे जय साध का मंता। हर सिंह राते जम कि नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते पू दुख ना लागे, हर संग राते हर संग राता अंदर जागे। हर संग राता सहज कर पसै, हर संग राते ब्रह्म पौ न सह। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। हर संग कहो नानक तिन कहो जा बल जाई, जिन कहो प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उदम करत शीतल मन पई, मार्ग चलत सकल दुख गए। नाम जपत मन पई आनंद, रस गाय गुण परमानंद। खेम भया कुशल कर आए, पेट दसा संग गई बलाई। रहाओ नेत्र पनीत पेखत ही दर्श, धन मस्तक चरण कमल ही पारस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाई, सुख पाया लग दास पाई। आप गया था आपे पाई, कृपा दान की शरणी पाए। जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया। सर पाए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन की नोश नान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यु हर को नाम। सब सगल पीवत गुण गाय गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल रहाऊ। बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन राधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जोग ध्यान ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ कौ मन माने। अगाध बोध हर अगम पारी, नाम जपत नाम हृदय विचारी। नानक कहो प्रभ कृपा धारी। गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया। चरण कमल गुर हृदय ते बसाया,

तुमा ही जान्या। तुम पूरन पुरख विता तेरा खुर शरण अनाथ दीन को करो हमारी गाते तरण सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते कार कृपा जिस राखो संगे ते पार पराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किछ तुम रह हाथे ऐसा निधान देहो प्रभ ए ऐसा निधान देहो मोको हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नान खर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायो देव मोको सतगुर पये मोको आचार्य गुरहे दिखायो सहज मोको सतगुर पये दयाल देव रहाओ काठ जेवरी कियो दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको आचार्य गुरहे दिखायो पयो प्रगास सर्ब उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्त्या अन पै ठहरायो मान आज्ञा सर्ब सुख पाए दुखे ठाओ गवायो जो सुप्रसन्न पय प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किछ आवत ना किछ जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भक्त टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर मन का मन ताकि ओट गही जय रे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहो मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाइये रे जो प्रभ करे सोई पल मान हो सुख दुख ओही त्याइये रे कोट पते तो धारे खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दयाल दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे सबको मात पिता प्रतिपालक जिये प्राण सुख सागर रे देन दे तोट नाही तिस करते पूर रहे ओ रत्नागर रे जाचिक जाचे नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास ताकि शरण आई जाते बिरथा न कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पांचवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कभू न मनो बिसारे इहा उहा सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम जेतारे शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अगन निवारे गर्भ कुंड नरक तेरा खै पवजल पार उतारे चरण कमल आराधत मन मह जामकी त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा गम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नहारे काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बलिहारे राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भक्त बिना जीत जन्म ए रतन अमोलक साथ संगत जप एक खिना रहाओ सुत संपत बनिता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग है।

बार न बलिहार न लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाओ कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जो मन प्रभ तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी ईहा उहा तुम रखे गुर केर पाते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गवड़ी महला पंजवा हर हर हर आराध्य संत संग हर मन वसै परम मोह पौ साधिय रहाओ वेद पुराण सिमरित भने सब ऊच विराजित जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध स्यान पहों मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पांजवा मन राम नाम गुन गाइये नीत नीत हर सेविये सास सास हर त्याइये रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर जपिये सो जन दुख ना व्यापिये जाको गुर हर मंत दे सो उभरिया माया अगन ते नानको प्रभ मया कर मेरे मन तन वासै नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम इहा सुख आनंद कना आगे जिय कै संग काम रहाओ कटिए तेरा अह रोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग हर रस जिन जन चाखिया ताकी त्रिसना लातिया हर विश्राम निद पाया सो बहुर न कत ही जाताया हर हर नाम जाको गुरु की दिया नानक ताका पौ गया।

कह सुन रे मनाकार कीर्तन होए उधार राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मित दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जो लो हो किस सोचो चित वो तो लो दुखन परे जो कृपाल गुर पूरा भेटिया तो आनंद सहजे जेती सियानप कर्म हो किए तेते बंध परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त पहे जो लो मेरो मेरो करतो तो लो बिख केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तव लो डान परे पोट डार गुर पूरा मिलिया तव नानक निर पय गौड़ी महला पांचवा पावन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ मान अभिमान दो उस माने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्ट आग्यो निरपो पय संत भ्रम डार्यो पूरन सर बाग्यो जो किछ करता कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन के सोयो मन जाग्यो जन नानक ओढ़ तुहारी परयो आयो शरण आग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी महल माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख तृष्ण सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर मस्तक गुर पूरे धरयो मन जीतो जग सारी तृप्त घाए रहे रिद अंतर डोलन ते अब चूके अखोट खजाना सतगुर दिया टोट नहीं रे मुके आचार्य एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे

राग गौड़ी माझ महला पांचवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जियो कोट जना कर सेव लगाया जियो भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो पूरन सभनी जाई जियो क्यों पेखा प्रीतम।

जियो, बिनोद ठाकुर पह कही है जियो, इच पुनी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो, मन तन तेरा मन तन तेरा एहो जियो, पे वारे जियो, विसर नहीं प्रभ प्राण अधारे जियो, सदा तेरी सरणाई जियो, जिस मिली है मन जीवे भाई जियो, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किस प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निदान जपै वड भागी जियो, नाम निरंजन एक लिव लागी जियो, गुर पूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पहर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहो भगत बन जारा जियो, हर धन रास सच वापारा जियो, जन नानक सत बलिहारा जियो, राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान, जोर तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान, रहो सबे गल्ला जातिया सुन के चुप किया, कद ही सुरत ना लधिया माया मोहड़िया, दे बुझारत सारता से अखी दिखड़िया, कोई जे मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहिया, एक दोहो चहो क्या गणी सब इकत साध मुठी, एक अद नाए रसियड़ा का बिरली जाए बुठी, भगत सच्चे दर सोह दे आनद करे दिन रात, रंग रते परमेसर जान नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहर आराध्य पूरन सतगुर ज्ञान, रहाओ जित घट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ, सेवा सुरत न जानिए सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध, ओढ़ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध, भय कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप, तत्ती भावना लग गई सतगुर रखे आप, गुर नारायण दया गुर गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब किछ पाया जान नानक सद बलिहार, गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा, रहाओ राम गोबिंद जपेंदिया हुआ, राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिसते सोई भाई मित्र, सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोबिंद मनहो विसारिए जिस सिमरत दुख जाहे, जिस लड़ लगिया जीविय भव जल पाइए पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार, जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास, गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ, जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ, सच्चे से तीरते

आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म तारा, तुझ बिन कोय ना देखो मीत। किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लाग।

कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन वखान्या जिन बुझिया तिन सहज पछान्या देख विचार मेरा मन मान्या कीरत सूरत मुक्त इक नाई कही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई उस्तत करे केते मुन प्रीत तन मन सूचे साच सोचीत नानक हर भज नीता नीत गौड़ी ग्वारेरी महला पहला ना मन मर न कारज होए मन वस दूता दुर्मत दोए मन माने गुरते इक होए निर्गुण राम गुण है वस होए आप निवार बीचारे सोए रहाओ मन भूलो बहुच तै विकार मन भूलो सिर आवे पार मन माने इहर एक अंकार मन भूलो माया कर जाए काम विरुद्धो रह ना अठाए हर पज प्राणी रसन रसाए गैवर हैवर कंचन सुत नारी बहु चिंता पिड़ चाले हारी जुए खेलन काची सारी संभो संची पय विकार हर्ष शोक उभे दरबार सुख सहजे जप हृदय मुरार नदर करे ता मेल मिलाए गुण संग रहे अवगुण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावै सब दुख निवास मन मुख मूड माया चित वास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास मन चंचल तावत फुन तावै साचे सूचे मैल ना पावै नानक गुरमुख हर गुण गावै गौड़ी ग्वारेरी महला पहला हम मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बिगूते पावै दोए सोख मावै तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मागे नाम विसारी रहाओ अदिष्ट दिसैता कहया जाए बिन देखे कहना बिरथा जाए गुरमुख दिसे सहज सुभाए सेवा सुरत एक लिव लाए सुख मांगत दुख अगल होए सगल विकारी हर पुरोए एका बिन एक बिना झूठे मुक्त ना होए कर कर करता देखे सोए तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुभाए गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन मह साचो गुरमुख पाओ नाम बिना नाही निज ठाओ प्रेम परायण प्रीतम राओ नदर करे ता बूझ है नाओ माया मोह सर्व जंजाला मान मुख कुचील कुचित बिकराला सतगुर सेवे चूके जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बुझे एक लेव लाए निज कर वासे साच समाए जमन मरना ठाक रहाए पूरे गुर से एह मत पाए कथनी कथो न आवे और गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख पाने तिसर जाए नानक नीच कहे लेव लाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चित वास काम क्रोध अहंकार बिना

निरंजन सोई रहाओ, दूजी दुर्मत आखे दोए आवै जाए मर दूजा होए, तरण गगन नह देखो दोए, नारी पुरख सबाई लोए। रब सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुर मुख को एक बुझाया, एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुकम वरतै सब लोई, एक ते सब ओपत होई, रहा दोवै खसम एको, रहा दोवै खसम एको, जान गुर कै शब्द हुकम पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही। गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचारे, पंच मार साच उर धारे, रहो जिसके अंतर साच वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, रव सस एको ग्रह उद्यान, करनी कीरत कर्म समान, एक शब्द एक भिख्या मागे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैरच रह ना बाहर जाए, कीमत कौन रह लिव लाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हो मैं मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान। गौड़ी महला पहला, खिमा गही व्रत सील संतोखंग, रोग ना व्यापै ना जम दोखंग, मुक्त पये प्रभ रूप ना रेखंग, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख ग्रह बाहर सोए, रहाओ निरपो जोग, जोगी निरंजन त्यावे, आंदेन जागे सच लिव लावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रह सो निरपो होए, जैसा सेवै तैसो होए, नर नह केवल निरपो नाओ, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर के शब्द आप पछाण, साचे शब्द दर निशान, शब्द मरे तिस निज घर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अठसठ मजन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रस सारा, सच करनी अब अंतर सेवा, मन तृप्ता स्या अलख अपेवा, जह जह देखो तह तह साचा, बिन बूझे चगरत जग काचा, गुर समझावे सोची होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कार कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु भय बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तत विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास। गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जान्या, वेद की विपत पड़ी पछुतान्या, जह प्रभ सिमरे तही मन मान्या, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारे, रहाओ बाल राजा माया अहंकारी, जगन करे बहु पार अफारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरि चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत ना पाए अपेवे, आप भुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाकस दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा धारी, भूलो रावण मोद अचेत, लूटी लंका शीस समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, सहस बाहो मद कीट मह खासा, हरनाकस ले नखो विधासा, दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा,
जरा संध काल जमुन असंघारे रक्त बीज काल नेम विदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जान को दुख पचे दुख होई जान में जय गुर शब्द ना जन में जय गुर शब्द ना जान्या क्यों सुख पावे परम पुलान्या एक तिल भूले बहुर पछुतान्या कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीन्या अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मिटिया जाए गुरमत धर्म धीरज हर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चुआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहरे हढ़ावो बिन हर नाम कहा सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहा सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहा सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोड़ सिगार करे अत प्यारी बिन जगदीश भजे नित खुआरी दर घर महला सेज सुखाली अहनस फूल बिछा छै माली अहनस फूल बिछा वै माली बिन हर नाम सो देहो दुखाली हैबर गैबर ने जे वाजे लस्कर नेम खवासी पाजे बिन जगदीश झूठे दिवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो ताज कुल है सिर छत्र बनावो बिन जगदीश कहा सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हौ मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जानस अवरे पर पंच ब्याद त्यागे कवरे पाए मिले सच सच सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिले मल तोई रहाओ ऊंधो कवल सगल संसार दुर्मत अगन जगत पर जारे सो उभरे गुर शब्द विचारे प्रिंग पतंग कुंचर अरमीना मिर्ग मरे सह अपना कीना तृष्णा राच तत नहीं बिना काम चित कामन हितकारी क्रोध बिना

वेश करे बहु भस्म लगावे नाम विसार बहु रूप छुतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सहे जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर।

गुर सबदी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाण दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए आने, जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए। गौड़ी महला पंजवा, हो मैं करत पेखी नहीं जान्या, गुरमत गुरमुख भगत विरले मन मान्या। हो हो करत नहीं सच पाइये, हो मैं जाए परम पद पाइये। रहो हो मैं कर राजे बहुत आवे, हो मैं खपहे जन्म मर जावे। हो मैं निवरे गुर शब्द विचारे, चंचल मत त्यागे पंच संघारे। अंतर साथ सहज करे आवे, राजन जान परम पद, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर भरम चुकावे, निरपौ कै घर ताड़ी लावे। हो हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो झगर चुकावे। जेती है तेती कहो ना, जेती है तेती कह नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा का लै कर आया। ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम भुलाया। जो उपजै सो काल संघारिया, हम हार रखे।

ही रहना, नामो फूले जम का दुख सहना, मैं तार नाम ज्यो राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सहा मरहे संचे माया दाम, मैं तन दीजे हर अमृत नाम, रयत महर मुक्त।